0: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। FM 103.2 MHz पर सवेरे के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है।

केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है।

0: सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुंबई से प्रसारित चिंतन वंदनवार। उसके बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। तत्पश्चात आप सुनेंगे संगीत सरिता।
2: वंदनवार

चिंतन। बालगंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उन, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी।

ध्वनि तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरूखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्ववाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री श्यामा पर। 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा। कहानी सुनिएगा अंजलि, लेखक है अरगवान अब्बी। छाया गीत शाम 5 बजे। 5:30 पर तराने नए पुराने।

छह बजकर 35 मिनट पर संध्या रंजन सुनिए गज, शाम 7 बजे जयबाला, 7 बजकर 45 मिनट पर गुलदस्ता,

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती सरन शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। नौ बजकर तीस मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री श्यामा पर।

10 बजे छाया गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। ये था लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम आपको सुनवा रहे हैं गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला गज तत् वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इसकी पहली कड़ी।
1: नमस्कार। भारतीय संगीत में गज वाद्यों की अपनी परंपरा रही है। गज, जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है,

प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु 20वीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को विततवाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को वितत कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवनद्य वाद्य को वितत वर्ग के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए इसे गज वाद्य कहना या गज तत्वाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गज वाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इन वाद्यों से साथ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में बहुत प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस वर्ग के वाद्यों में वायलिन, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई आदि वाद्य प्रचलित हैं। श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वाद्य की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में बेला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त वीणा लंकाधिपति रावण द्वारा बनाई गई थी, जिसके दो तारों को गज से बजाया जाता था। संगीत सुधाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज आदि ग्रंथों में गज से बजाई जाने वाली पिना की वीणा का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु यह स्वीकार करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वर्तमान वायलिन पाश्चात्य देशों की ही देन है। वायलिन का आविष्कार किसने किया, यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर ट्विफू प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को क्रिमाना के आंद्रे आमाती ने बनाया। कुछ गुणीजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गैस्पारो बर्तलोत्ती अर्थात गैस्पर द सालो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायल से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से इसका विकास हुआ हो, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन ईस्वी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालुस्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है। उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुगुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री शिशिर कणाधर चौधरी और श्रीधर पारसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं बल्कि इनके द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं पीडी सप्तऋषि जी का वायलिन वादन। राग है जौनपुरी।

के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल के सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे, संगीत सरित

संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार झालावाड़ के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अमृता मीणा। तो स्वीकार करा है हमारी ओर से प्यार भरा सा नमस्कार। और आइए हम करते हैं हमारे आज के दिन की शुरुआत इस सुविचार के साथ।

दोस्तों, वाकई में मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे लक्ष्य होते हैं, हमारी सफलताएं होती हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है, तब हमें अक्सर यही सवाल हमारे जहन में आता है कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे, क्या हम ऐसे प्रयास करें जिसकी वजह से हम अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करके उस तक पहुँच सकें। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो कई तरह की बाधाएं हमारे जीवन में आती है और

स्थितियों से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि ये वही समय है जब हम अपने अंदर की क्षमताओं को देख सकते हैं। जब परिस्थितियां कठिन होती है तब हमारे पास मजबूत बनने के अलावा और कोई रास्ता होता भी नहीं है। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ें, और आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, और अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो आप रहेंगे, लेकिन जो भी करें हमेशा आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, तो हमारे छोटे छोटे से जो प्रयास हैं वो एक दिन हमारा एक बड़ा कदम बनेंगे, और उन छोटे छोटे प्रयासों के बाद जो हमारी सफलता हमें हासिल होगी, उसके बाद जो जीत की खुशी आपको मिलेगी, बस उसका जवाब ही अलग होगा। डेल कार्नेगी ने कहा है कि दुनिया की अधिकतर महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन लोगों के द्वारा हासिल की गई है जिन्होंने तब भी प्रयास करना जारी रखा था जब उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो रुकने के बजाय खुद को आगे बढ़ाना मुश्किल जरूर होता है।

आपको मिलेगी, बस उसका जवाब ही अलग होगा। डेल कार्नेगी ने कहा है कि दुनिया की अधिकतर महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन लोगों के द्वारा हासिल की गई है जिन्होंने तब भी प्रयास करना जारी रखा था जब उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो रुकने के बजाय खुद को आगे बढ़ाना मुश्किल जरूर होता है लेकिन असंभव नहीं। जी हाँ बिल्कुल, कठिन परिस्थितियों में कई बार हम सोचते हैं कि हम रुक जाएं या हम आगे ना बढ़ सकें तो हम कोई और रास्ता अपना लें, लेकिन अगर हम इसे विचार पर थोड़ा गहनता से सोचें तो ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि मुश्किल वक्त में हम ये सोचें कि असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ आप संभव बना सकते हैं। दोस्तों परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हर परिस्थिति आपको कुछ नया सीखने का मौका देती है। जो स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है आप उसे भी स्वीकार करें, और जो आपके नियंत्रण में है उस पर आप ध्यान दें कि आप कहां पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नाव लहरों के खिलाफ चलकर ही किनारे तक पहुंचती है। आपकी आज की दृढ़ता कल की आपकी सफलता की एक नई कहानी लिखेगी।

आगे अपने नाजुक कंधों से बोझ ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, कई तरह के ऐसे प्रयास हैं जो हमारी भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए दुनिया भर में बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार या हम यूँ कहें कि बाल श्रम की क्रूरता को समाप्त करने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 24 स्पष्ट करता है कि 24 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य या किसी कारखाने में रखा जाना या उनके द्वारा कार्य करवाना आपराधिक है। कारखाना अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम इन सभी से बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो आज भी कई क्षेत्रों में ये सभी चीज़ें विद्यमान हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे सरकार द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की पहल पर कई तरह के ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसकी वजह से बच्चों को इन सभी कार्यों से मुक्त करवाया।

का विकास रुक सा जाता है, या हम यूं कहें कि बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है। बच्चों में शिक्षा का महत्व भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, और साथ ही जो बच्चों के अधिकार हैं, जो उन्हें मौलिक रूप से अधिकार दिए गए हैं, उनका भी संरक्षण होगा। तो आज के इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या जो क्रूरता बच्चों में देखी जाती है, खास करके उनके द्वारा जो श्रम करवाया जाता है, जो श्रम बच्चों के द्वारा किया जाता है, इस दिवस के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाती है कि बच्चों से काम करवाना और करना दोनों आपराधिक है। इसलिए आज के ये दिन बच्चों के लिए समर्पित है, ताकि उनके जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और बच्चों को अपने जो शिक्षा का अधिकार है, उनका जो विकास है, वो पूरी तरह से हो सके।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आपको अवगत कराते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय से।

शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए होगा कार्यक्रम युववाणी। युववाणी में आज चर्चाएं होंगी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक दिवस, साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस पर भी आज आप चर्चा सुनेंगे। चिराग जल रहे हैं युवा डायरी में आप सुनेंगे भेंटवार्ता, चित्रेश धाकड़ का विकास रुक सा जाता है या हम यूं कहें कि बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है। बच्चों में शिक्षा का महत्व भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और साथ ही जो बच्चों के अधिकार हैं, जो उन्हें मौलिक रूप से अधिकार दिए गए हैं, उनका भी संरक्षण होगा। तो आज के इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या जो क्रूरता बच्चों में देखी जाती है, खास करके उनके द्वारा जो श्रम करवाया जाता है, जो श्रम बच्चों के द्वारा किया जाता है, इस दिवस के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाती है कि बच्चों से काम करवाना और करना दोनों आपराधिक है। इसलिए आज के ये दिन बच्चों के लिए समर्पित है ताकि उनके जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और बच्चों को अपने जो शिक्षा का अधिकार है, उनका जो विकास है, वो पूरी तरह से हो सके।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आपको अवगत कराते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय से।

साथ जून माह में कैसे लगाएं सब्जियों की नर्सरी, इस विषय पर भेंटवार्ता आप सुनेंगे राजू धाकड़ कृषक सलाहकार झालरापाटन से बद्रीलाल लोधा की बातचीत। वहीं जानकारी की बातों में आज आप जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर और इन्हीं के साथ मौसम की जानकारी, बाजार भाव और समर्थन मूल्य भी आप जान सकेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की इस अगली चर्चा पर। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे आहार विहार और आचार विचार में योग के सिद्धांतों को कैसे शामिल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर हम बात करें तो योग जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि योगा केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। इसे हम अपने खानपान और दैनिक गतिविधियों में शामिल करके, साथ ही हमारे जो सोच है और व्यवहार में शामिल करके एक संतुलित जीवन को जी सकते हैं। हम योग को अपने जीवन में शामिल करके एक संतुलित और स्वस्थ, साथ ही तनाव मुक्त जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों, योग में भोजन को शरीर का ईंधन माना गया है, लेकिन आजकल हम जल्दबाजी में या भाग दौड़ भरी जिंदगी में खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले भोजन है उसका देखा जाए तो जो संबंध है, जिसमें हम बात कर रहे हैं योगा और खाने की, तो कई बार हम इन दोनों चीज़ों को सही से अपने जीवन में नहीं ढाल सकते हैं। लेकिन क्या अगर भोजन के समय को सिर्फ एक काम मानकर उसे पौष्टिक अनुसंधान में बदलने का कोई तरीका है तो क्या हम अपना सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम भोजन को सिर्फ यूँ ना सोचें कि हमें नहीं बस खाना है फटाफट से और खाया और अब हमें अपना काम करना है, जी बिल्कुल नहीं। हमें थोड़ा समय निकाल कर खाने को हम बड़े अगर तरीके से खाने को अगर हम अपने जीवन में उसका एक महत्व जो है वो देंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में स्वस्थ भी रहेंगे और कई तरह के बदलाव भी को शरीर का ईंधन माना गया है। लेकिन आजकल हम जल्दबाजी में या भाग दौड़ भरी जिंदगी में खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले भोजन है उसका देखा जाए तो जो संबंध है, जिसमें हम बात कर रहे हैं योगा और खाने की, तो कई बार हम इन दोनों चीज़ों को सही से अपने जीवन में नहीं ढाल सकते हैं। लेकिन क्या अगर भोजन के समय को सिर्फ एक काम मानकर उसे पौष्टिक अनुसंधान में बदलने का कोई तरीका है तो क्या हम अपना सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम भोजन को सिर्फ यूँ ना सोचें कि हमें नहीं बस खाना है फटाफट से और खाया और अब हमें अपना काम करना है, जी बिल्कुल नहीं। हमें थोड़ा समय निकाल कर खाने को हम बड़े अगर तरीके से खाने को अगर हम अपने जीवन में उसका एक महत्व जो है वो देंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में स्वस्थ भी रहेंगे और कई तरह के बदलाव भी हमारे जीवन होंगे। हमें अपने खाने में ताज़ा फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, मेवे और स्वच्छ जल को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन को तो शांति मिलेगी ही, साथ ही हमारे शरीर को जो है उसे भी ऊर्जा प्राप्त होगी।

दोस्तों योगा के अनुसार पेट का आधा भाग अन्न और एक चौथाई हिस्सा जल, साथ ही एक चौथाई भाग हवा और खाली छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपनी भूख थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि हमें अपने खाने में कई बार हम अपने स्वाद में या हमारा ध्यान कहीं और है, हम अक्सर खाना खाते टाइम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या जो स्क्रीन टाइम है हम वो देते हैं, तो ऐसे में हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितने खाने की ज़रूरत है, हम क्या खा रहे हैं और कितनी हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम खाना खाते वक्त बिल्कुल शांत वातावरण में बैठें, सकारात्मक सोच हम बनाकर रखें और खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएं। जितनी हमें भूख है उससे थोड़ा सा खाना हम खाएं, क्योंकि योग और भोजन भले ही अलग अलग हैं लेकिन इनका आपस में एक गहरा संबंध है। दोस्तों दोनों ही वर्तमान में जागरूकता और उपस्थिति पर जोर देते हैं, क्योंकि दोनों का संतुलन बनाकर रखना हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके ज़रिए हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि जो चटाई से लेकर थाली तक के लिए लागू किया जाना चाहिए। हम योगा करने के लिए एक शांत वातावरण को ढूंढते हैं और शांत वातावरण पर बैठकर हम योगा करते हैं। ठीक उसी तरह शांत वातावरण में बैठकर अपनी ज़मीन पर कुछ बिछाकर हमें तरीके से खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देती है। और अब आज की नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विचार और कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी साथी अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम के गाए इस गीत के साथ। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत। फिल्म का नाम है साजन की बाहों में।

कुमार सानू की आवाज में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दीवाना से। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले एक जरूरी सूचना। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:15 पर आप सुनेंगे आपके स्वास्थ्य पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। और आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय रहेगा बच्चों के फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे आज के इस विषय से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 07432-232593। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है वतन के रखवाले।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मोहम्मद अजीज और सलमा आगा के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: थे वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने

0: वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में

0: मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण

0: अलास्का को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी
2: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आपके स्वास्थ्य पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: दोस्तों, बच्चों में फ्रैक्चर होना या आम भाषा में हम कहें तो हड्डी का टूटना एक सामान्य सी स्थिति है, क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं। अक्सर खेलते समय या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान चोट लगने पर बच्चों में फ्रैक्चर की जो है संभावना देखी जाती है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां बड़ों की तुलना में काफ़ी नरम और लचीली होती है। तो किस तरह से बच्चों में फ्रैक्चर होता है, क्या इसके कारण रहते हैं, हम अधिकतर इस बात पर कभी गहनता से सोच नहीं सकते। तो किस तरह से हम इसका उपचार करें या किस तरह के बचाव ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी सेहत कार्यक्रम में आज मैं अमृता मीणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा जी। नमस्कार सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, आप सभी को नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, अगर आप भी चाहते हैं हमारे आज के इस विषय से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 07432-232593। कार्यक्रम शुरू करने से पहले विषय आपको एक बार फिर से बता दें, बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर, उनके कारण, बचाव और उपचार। इसी के साथ एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी श्रोता हमसे जुड़े वो विषय से संबंधित सवाल ही पूछें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और इस दौरान उन्हें चोट लगने की जो संभावना है वो भी सबसे ज़्यादातर होती है, तो ऐसे में जो फ्रैक्चर की संभावना बढ़ती है, तो किस तरह से बच्चों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं?
1: जनरली बच्चे जब स्पोर्ट्स मतलब बाहर एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, तो उस दौरान गिरने से अधिकतर फ्रैक्चर होते हैं। जैसे बच्चे खेलते वक्त गिरते हैं, तो सबसे पहले गिरते हैं तो हाथों के बल बच्चे गिरते हैं, तो कभी तो गिरते हैं तो अपनी कोहनी या फिर कलाई को वो प्रोटेक्टिव मतलब बचाव के उपचार में पे उसको टिकते हैं, तो वो टेकना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो कोहनी का होता है, उसके साथ साथ कलाई का फ्रैक्चर भी हो जाता है, उसके साथ साथ हाथ की जो हड्डी लंबी हड्डी होती बीच में हाथ की, तो वो भी फ्रैक्चर हो जाती है। अब इसको बचाने के लिए बच्चों को एक तो स्पोर्ट्स में मतलब फिजिकली एक्टिव रहते हैं बच्चे, तो वो अपने आप में खुद सेल्फ प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बच्चे किसी कारणवश संभल नहीं पाते तो टेढ़े मेढ़े गिर जाते हैं, तो इस वजह से मोस्ट कॉमन उसमें जनरली अपर लिम मतलब हाथों का फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। और जैसे किसी हाइट से ऊंचाई से गिरते हैं करते हैं तो पैरों में भी जनरली फ्रैक्चर देखने को मिलता है।
0: जी सर, आपने बताया कि खेलते वक्त बच्चों का गिरना या कोई अदर एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं उस दौरान चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं, तो इसके अलावा भी कोई और कारण रह सकते हैं बच्चों में फ्रैक्चर्स के?
1: हाँ, ये बच्चों में फ्रैक्चर के बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे तो जैसे कोई कंजनेटल एनोमली जिसको हम कहते हैं कि जो आनुवंशिक चीज़ आती है, जैसे बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर होती है, बाय बर्थ ही आती है वो, तो आनुवंशिक बीमारी होती है जिसके वजह से बच्चे की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती है। तो वो क्या है कि हल्का सा जैसे आपने बच्चे को हाथ पकड़ा या गोदी में उठाया या फिर है ना उसको थोड़ा खींचा, तो उस टाइम पे भी उसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से उस जगह से भी उसका हल्का सा या ज़्यादा फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन डी होता है जो आजकल बच्चों में काफ़ी मतलब कमी देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, तो उस वजह से भी आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन बच्चे का हाथ पकड़ना है कुछ भी किया मैनिपुलेशन किया तो उस दौरान भी बच्चों में हल्का सा या ज़्यादा फ्रैक्चर हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, चोट लगने पर किस बता करें कि फ्रैक्चर है, क्योंकि कई

0: पर चोट छोटी सी होती है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जैसे जैसे वो गंभीर रूप ले लेती तब उस वक्त हम थोड़ा सा ध्यान अपना उस ओर ले जाते हैं। तो किस तरह से हम पता लगाएं कि बच्चे में जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है?
1: हाँ, ये सबसे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चे क्या है कि डर के मारे बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पाते, जैसे बच्चों के लग जाती है लेकिन वो नहीं बता पाते, क्योंकि बताएंगे तो घर वाले डांटेंगे यार, पेरेंट्स मतलब सब लोग कहेंगे तू कैसे गिर गया। तो बच्चे जब किसी पार्ट में उसके लगती है, जैसे अपन पैरों में लगती है, तो बच्चे चलते हैं तो चलते वक्त तो उनकी लिंपिंग मतलब वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, या फिर क्या नाम है, हाथों में जब होता है कभी हाथ टच करने पे या पता करने पे उनके थोड़ा सा दर्द होता है। तो जनरली जब बच्चों में कभी भी किसी के भी लगती है तो सबसे पहले जहाँ पे लगती है उसके यहाँ पे देखो सूजन आ जाती है ना, और उसके बाद में सूजन आने के बाद में उसको थोड़ा सा टच करते हैं उसमें दर्द होने लग जाता है। तो अपने को सबसे पहले बच्चे को जैसे देखभाल अपन बच्चों की करते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो जो थोड़ा 5-6 साल का हो जाता है, तो बच्चों को अपन डेली सुबह नहलाते वक्त या फिर जैसे सुबह शाम अपन बच्चे को देखते हैं तो उसको देखना चाहिए कि बच्चा कहीं अपनों को बता तो मतलब बचा तो नहीं रहा अपनी चोट को, मतलब बताने से वो तो कतरा तो नहीं रहा। तो जनरली जब पता चलता है बच्चे के कोहनी में सूजन आ रही है लेकिन उसने बताया नहीं, सूजन थोड़ी बढ़ गई, तो हाथों हाथ इमीजिएट आपको उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर घर के घरेलू कुछ उपाय होते हैं जो करना चाहिए और कौन से उपाय है जो नहीं करना चाहिए जो जनरली लोग करते हैं। जैसे बच्चे के लग गई अब किसी ज्वाइंट में, जैसे कोहनी में हुई, कलाई में हुई, घुटनों में हुई, कहीं भी सूजन आ जाती है, अब जो लगने के बाद जो सूजन आती है तो उसके पहले सबसे पहले आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करो। कोल्ड स्पॉन्जिंग मतलब ठंडी चीज़ से सेक करो, ना कि गर्म चीज़ से।
0: जी
1: जनरली आप उल्टा होता है ग्रामीण क्षेत्र में, सबसे पहले उसको गर्म चीज़ से सेक करते हैं, सरसों का तेल ले लेंगे, हल्दी डाल देंगे और फिर उसमें मालिश करेंगे, या कोई पत्ते बांध लेंगे, कोई कपड़े बांध लेंगे, कोई हल्दी गर्म करके बांध लेंगे। तो रिसेंट जो चोट होती है, ताज़ा चोट होती है, तो सबसे पहले उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग बर्फ के सेक से, बर्फ का सेक नहीं होता, ठंडी चीज़ ले लो, ठंडी कोई भी चीज़ जैसे ठंडा पानी हो मिल जाए तो उससे सेक करो। और दूसरी बात उसको इमोबिलाइज कर दो, इमोबिलाइज जो हमारी टर्म होती है उसको मतलब मोमेंट मत कराओ उसको, आपके पास कुछ भी छोटा गत्ता हो या कुछ भी सपोर्ट हो तो उसको उसका सपोर्ट दे दो उसको, और उसको इमोबिलाइज मतलब उसका मोमेंट मत होने दो, कोहनी का मोमेंट दो उसको मत होने दो, और बाद में फिर आप कंसल्टिंग डॉक्टर से मिलके और उसका एक्सरे करा के उसका फर्दर ट्रीटमेंट ले सकते हो।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि कई बार देखने में आता है कि अगर चोट लग गई या फ्रैक्चर सा हो गया है तो मालिश का जो है वो लोग हमारे जो घर के मेंबर उनका मालिश का रूटीन चालू हो जाता है। इनमें अगर हम बच्चों में नहीं बड़ों में भी देखें तो इवन हर घर में ये देखा जाता है कि अगर आपको थोड़ी सी चोट लग गई तो सरसों का तेल हम लेके मालिश करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है।
1: बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है वो। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रिसेंट चोट जो होती है, ताज़ा जो चोट लगती है, उसमें कभी भी गर्म चीज़ की मालिश नहीं करनी चाहिए, वो चाहे बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, क्योंकि जिसमें रिसेंट मतलब ताज़ा चोट लगती है तो ताज़ा चोट लगने की वजह से वहाँ का जो मांस फट जाता है उस, और मांस फटने के साथ छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसकी चोट की वजह से वो वाला पार्ट अपने आप ही गर्म रहता
0: जी
1: है ना, क्योंकि इंटरनल डैमेज हुआ तो आपके मांस का क्या नाम है कुचल जाता है वो कुचल जाता है। पहले तो मांस कुचलता है, उसके बाद में हड्डी तक पहुंचती है, चोट ज़्यादा होती है तो हड्डी भी टूट जाती है। तो सबसे पहले आप जो गर्म चीज़ पहले से इंटरनल जो जिस चोट पे जिस पार्ट पे लगा वो पहले से ऑलरेडी नहीं अंदर से गर्म है, अब उस पर ऊपर से आपने फिर गर्म सेक कर दिया तो उसमें सूजन और बढ़ने का डर होता है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ने का डर होता है। जो इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो हमारी लैंग्वेज में डिजास्टर कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जब पहुँच जाता है स्पेशली बच्चों में तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बोन तक चला जाता है। तो मालिश कृपया बिल्कुल नहीं करें, और गर्म चीज़ से सेक बिल्कुल नहीं करें, पत्ते नहीं बांधे। मैं हम हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट आते हैं, बच्चे जो भी आते हैं बड़े या बच्चे, तो उनको यही कहते हैं कि आप रिसेंट चोट में ताज़ा चोट में आप कोल्ड स्पंजिंग करें, बर्फ का सेक करें, ठंडी चीज़ का सेक करें, और मालिश नहीं करें, और उस पार्ट को इमोबिलाइज मतलब मोमेंट वो मतलब मोमेंट नहीं होने दें उसमें।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कई बार लोग पत्ते बांध लेते हैं, तो कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हमारे फ्रैक्चर के दौरान ही नहीं कई बीमारियाँ ऐसी जिनमें कारगर है, लेकिन उन्हीं के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो इन सब चीज़ों के जरिए काफ़ी नुकसान हमें हो सकता है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं कि मालिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि मालिश का प्रचलन

0: हमारे यहाँ सबसे पहले अगर हमें सिर दर्द भी हो रहा है तो हम तेल लेके पहले मालिश करेंगे, तो यहाँ तो हम हड्डी की बात कर रहे हैं, तो कई तरह का नुकसान इससे होता
1: नहीं, मैं बीच में कहना चाहूँगा, आपने जो बोला मालिश, मैं इसी बीच में कहना चाहूँगा, मालिश किस कंडीशन में करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिसेंट चोट, ताज़ा चोट में आप कभी मालिश नहीं करें, कभी गर्म चीज़ का सेक नहीं करें। जो पुरानी चोट होती है, जैसे कि मेरे कमर दर्द कंटिन्यू रहता है, जैसे सिर दर्द रहता है कंटिन्यू, कभी जैसे बद्दल हो जाते हैं उसमें मेरा सिर दर्द होता है, कुछ खान पान से मेरा सिर कमर दर्द होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में आप हल्की सी मालिश कर ले, जेंटल मालिश करें, ना कि जर्क वाली मालिश करें, खींचातानी वाली। और उस टाइम पर आप हल्का सा जैसे सरसों का तेल गुनगुना करके उसमें पीठ पर आप है ना हल्का सा मसाज कर सकते हैं। ताज़ा चोट में आप जैसे गिर गया, कमर दर्द हो रही है गिरने की वजह से, तो उसमें मालिश नहीं करें। पुरानी दर्द चलता रहता है तो उसमें आप हल्का फुल्का मालिश कर सकते
0: जी।
1: हैं।
0: मालिश करने का भी एक टाइमिंग है,
1: टाइमिंग
0: किस
1: होती है,
0: दौरान आपको करनी है, कब आप नहीं करें।
1: करनी है।
0: तो डॉक्टर साहब, हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्चर एक बार होने के बाद किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, किस तरह से, जैसे कि आप

0: प्लास्टर लगा के, जब प्लास्टर डॉक्टर लगाते हैं बच्चों में, तो स्पेशली आपको ध्यान रखने के लिए बोलते हैं कि भाई बच्चे में सूजन नहीं आ जाए उंगलियों में, पैरों में, प्लास्टर टाइट नहीं हो जाए, रात में बच्चा बहुत ज़्यादा रोए या फिर है ना क्या नाम है उसके फीवर हो जाए, तो इन चीज़ों में अगर प्लास्टर लगाने के बाद में आप घर पे चले जाते हो, तब भी अगर ये वाली चीज़ें आती है तो इमीजिएट आते तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि
1: जी
0: कभी कभी प्लास्टर सूजन बढ़ने से टाइट भी हो सकता है, बच्चे बता नहीं पाते, बच्चे सिर्फ रोते हैं और आप उसकी समस्या को समझ नहीं पाते, तो आते इमीजिएट आप कंसल्ट कर लें।
1: जी तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर छोटे बच्चों में फ्रैक्चर है तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है।
0: सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है किसी भी चीज़ का, तो इसकी क्या है कि नॉलेज हर घर के हर मेंबर को होनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं को होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट आपने जो किया और वो उसको आपने जो ट्रीटमेंट से ज़्यादा चीज़ नहीं बिगड़ी, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ट्रीटमेंट बहुत मतलब इजी हो जाता है। और कभी कभी हमारे पास जो केस आते हैं, तो जैसे बच्चों में फ्रैक्चर हो जाता है तो पहले वो वही वाली सेक कर लेंगे, मालिश कर लेंगे, लोकली के मतलब दिखा लेंगे, कोई अपने अपने सेल्फ मेडिकेशन ले लेंगे, ऐसे करके बच्चों में 3-4 दिन हो जाते हैं, सूजन बढ़ जाती है और इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, फिर आता है तो वो एक छोटी सी चीज़ ही इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर हमारे आने के यहाँ पर डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर को दिखता है सबसे पहले तो हड्डी फ्रैक्चर हुई इस पर नहीं जाता, सबसे पहले वो पार्ट इन्फेक्शन पे जाता है। और बच्चों में इन्फेक्शन होना एक बहुत डिजास्टर होता है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन जल्दी हड्डी तक पहुँचता
1: जी
0: है ना, तो वो चीज़ आप इमिजिएट ऐसी चीज़ें नहीं करें जिससे अपने घरेलू चीज़ों से अपने कुछ चीज़ जो अच्छी आप तो सोचते हो, आपका तो इंटेंशन है बच्चे को अच्छा करना है, अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो उसका उल्टा विपरीत प्रभाव
1: जी जी
0: पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: तो इस कंडीशन पे आप नहीं लाए बच्चों को, इमीडिएट कंसल्टिंग डॉक्टर, जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर हो, जो हड्डी वाले डॉक्टर हो, तो उनसे कंसल्ट कर लीजिए।
1: जी
0: और क्या नाम है, घरेलू उपाय ऐसे नहीं करे जो भाई किसी, अरे यार पड़ोसी ने कह दिया कि यार है ना, अरे बच्चे के लगी, अरे कुछ नहीं पत्ते बांध ले तो हो जाएगा, हल्दी का सरसों का तेल गर्म करके लगा ले हो जाएगा, अरे ये पट्टी बांध ले, टाइट पट्टी बांध ले उससे हो जाएगा, टाइट पट्टी बांधना भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन करता है,
1: जी
0: बच्चे आते हैं जैसे लग जाती है उस पर बोट जैसे वो लकड़ी के वो लगा के और उसके ऊपर से चारों तरफ से टाइट
1: पट्टी
0: चीज
1: बांध
0: बांध
1: देते
0: देते हैं,
1: हैं।
0: पता चलता है नीचे जब खोलते हैं हम तो नीचे पूरा सूजन रहता है पूरे पार्ट में, और वो एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें बहुत दुख होता है कि यार कितनी चीज़ बढ़ा ली, इवन हम पेरेंट्स को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, ये क्या कर लिया आपने, और ऐसे 2-3 केस तो अभी रनिंग में हमारे चल रहे हैं कि एक छोटी सी चीज़ है, बच्चे छोटा बच्चा था, एक इधर के एक तोकलेरा के आसपास का और एक इधर भवानी मंडी के आसपास का बच्चे, छोटी 5 साल की थी, उसकी लगी पैर में, उसे लगने के बाद में उसने वही मालिश कर ली और वो लोकल इसको हमें सेल्फ मेडिकेशन ले लिया और ऐसे करके 5-7 दिन तक उसको चलाती रही वो।
1: जी
0: जब फिर हमारे पास आया तो हमने देखा कि बच्चे के अंदर जहाँ लगी थी वहाँ पर पस पड़ चुका है, हड्डी में पस जा चुका है,
1: पस पड़ना ये तो एक
0: बड़ा
1: बहुत बड़ी
0: बड़ी
1: गंभीर
0: बात है,
1: समस्या हो गई वो
0: गंभीर
1: भी
0: समस्या।
1: बच्चों में,
0: हाँ, और फिर वो मवाद हड्डी तक पहुँच चुका है, इवन हड्डी का पार्ट भी उसने खराब कर चुका
1: खराब
0: है,
1: कर
0: हमने
1: दिया।
0: उसके 2 बार ऑपरेशन किए, अभी बच्ची थोड़ी ठीक है, अभी वो चलने के लायक है, लेकिन फिर भी हम उसको आगे ध्यान देते हैं कि हड्डी का इन्फेक्शन कभी कभी दोबारा रिएक्टिव हो जाता है,
1: जी, तो
0: क्योंकि
1: ये काफी
0: इम्यूनिटी
1: गंभीर
0: गंभीर
1: समस्या
0: समस्या
1: है।
0: हो जाती है। एक छोटी सी चोट थी, इवन उस बच्ची के ना फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ कोल्ड स्पंजिंग, सिंपल एंटीबायोटिक इमोबिलाइजेशन मतलब जिसको हल्का सा प्लास्टर कहते हैं उसको लगा के वो रेस्ट करती, उसी में ही वो ठीक हो जाती
1: ठीक हो
0: है,
1: जाती है,
0: लेकिन वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: थोड़ी सी
0: उसकी
1: लापरवाही हमारी कहें या
0: लापरवाही हो गई,
1: यूं कहें कि हम
0: हाँ
1: जागरूकता की कमी
0: कमी की वजह से।
1: कमी डॉक्टर साहब आपने एक बात कही कि कई बार हम लोग फ्रैक्चर हो जाता है तो खुद से ही अपना घरेलू ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अक्सर देखने में आता है कि अगर हमारे हाथों में फ्रैक्चर है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो सबसे पहले तो हम अपना घरेलू इलाज करेंगे, उसके बाद हम ढूंढते हैं कि कौन हमारे हाथ को सही ठीक ठाक कर सकता है, ना कि हम डॉक्टर के पास जाकर बल्कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमारे हाथों में मालिश करेगा या हमारी हड्डी को इधर से टेढ़ा किया, उधर से टेढ़ा किया और सही जगह बिठा देगा। तो इन सब चीजों में भी काफी नुकसान हमें कई बार उठाना पड़ जाता है।
0: आजकल तो देखने को ऐसा बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, पहले क्या है कि जैसे स्पेशलिटी मतलब और तो जैसे स्पेशलिटी वाले डॉक्टर काफ़ी कम मिलते थे, तो पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, पहले इवन हड्डी टूट गई तो लोकल जो हड्डी बैठाने वाला खींचने वाले थे उनके पास जाते थे और फिर वो उनके हिसाब से इलाज करवाते थे, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से हर CSC PSC लेवल पे, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डॉक्टर हो गए, पब्लिक भी काफ़ी जागरूक हुई है, तो वो आ जाते हैं जनरली। फिर भी बहुत सारे जो ग्रामीण, बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या फिर किसी के बेचारों की इकोनॉमिकल कंडीशन

0: नहीं हो पाती, तो नहीं आ पाते, तो उस चीज़ में उनके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मतलब वही बातचीत, वही खींचा, वो किट, वो खींचातानी करना, टाइट प्लास्टर लगाना, मसाज करना, सेक करना, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए, सारी
1: जी
0: चीज़ों
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही थी कि सेल्फ मेडिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि
0: से।
1: आपको कोई परेशानी है और आप खुद से ही मेडिसिन लेके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बल्कि आपको ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए, विशेषज्ञ से सलाह लें और उसका ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन हम देखते हैं कि ये समस्या अधिकतर बनी ही है। अभी भी लोगों में ये है कि अगर आपको एक छोटा सा खांसी या सर्दी जुकाम भी है तो आप खुद से ही मेडिकेशन ले रहे हैं, ना कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, पेन किलर लिया, आप ठीक हो गए थोड़ी देर, लेकिन कुछ समय बाद आपको वापस से वही लक्षण दिखाई देंगे।
0: हाँ, ये होता है जनरली, क्या होता है कि अभी जैसे अपन, ये हमारा अपना टॉपिक है फ्रैक्चर वाला, तो जैसे बच्चे में कहीं लग गई और लगने के बाद में उसको देखा, हाँ थोड़ी सी सूजन आ रही है, कुछ हो रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन गाँव का, अरे भाई वो दे दे, पैरासीटामोल दे दे और एक एंटीबायोटिक दे दे, है
1: जी
0: ना, ऐसे दे देते हैं। हाँ वो देते हैं, उनका इंटेंशन ठीक होता है, लेकिन उनकी कितनी डोज जानी चाहिए, कितने टाइम पे जानी चाहिए, कितने दिन तक जानी चाहिए, ये उनको ज्ञान नहीं हो पाता। अब जैसे आप पैरासिटामोल देते हो तो उसका क्या है कि इन्फ्लेमेशन होता है लगने की, छोटी छोटी छोटी, इवन बड़ी भी नहीं है चोट, तो छोटी चोट की प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर डोज, ये पर प्रॉपर कितने दिनों तक देनी है, ये वाला ट्रीटमेंट पार्ट अभी इसको हर आदमी समझ नहीं पाता है, स्पेशली डॉक्टर के अलावा। तो ये चीज़ें, और वेट के अनुसार बॉडी में दवाई जानी चाहिए, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो तो इसमें चूक हो जाती है अपने से, और वो चूक अपने को भारी पड़ जाती है। आपने सिंगल डोज दे दी, जैसे ले पैरासीटामोल दे दी और एक एंटीबायोटिक दे दी, उसके बाद में वो चीज़ दब जाती है, उसके बाद में फिर वो एक दिन या 2 दिन बाद में वापस फिर उठ जाती है, उठती है तो फिर वो डिजास्टर, मतलब ज़्यादा इससे एग्रेसिव रूप में उठती है वो, और जब एग्रेसिव रूप में उठती है तो फिर वापस दे दी, फिर दबा दी, फिर थर्ड टाइम उठती है, ऐसे एक दो बार वो प्रयास करते रहते हैं, फिर ज़्यादा बढ़ जाती चीज़, फिर आते हैं डॉक्टर के पास।
1: जी, उस समय समस्या
0: हाँ
1: काफी
0: समस्या
1: गंभीर हो
0: गंभीर हो
1: चुकी
0: जाती
1: होती
0: है।
1: है। जी श्रोताओं, हम आपको बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं आपके स्वास्थ्य पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत, और आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर, उनके कारण, लक्षण, बचाव और उपचार। और आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे आज के इस विषय से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 07432-232593। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बच्चों में फ्रैक्चर्स के बारे में। अगर एक बार किसी भी बच्चे में फ्रैक्चर हो गया है तो उस दौरान थोड़े से पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो क्या क्या सावधानियां पेरेंट्स को रखनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपनी समस्याओं को बता नहीं पाता है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए?
0: देखो बच्चों को क्या है कि बच्चों में बहुत सारी स्टेज आती है, एक तो बच्चा होता है जो इंडोर में खेलता है, जैसे 2 साल के आसपास का बच्चा है, 1-2 साल से 5 साल तक का, 5 से 10 साल तक का, तो हर स्टेज पे अलग अलग सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने को लगता है कि यार बच्चा 2 साल का है, जैसे चलने फिरने लगता है उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए अपने घर की स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर जैसे कोई बच्चे कोई सीढ़ियाँ पे चढ़ रहा है, कोई भी इसे डोली पे चढ़ रहा है, कोई है ना आस पास और घर के बाहर कोई है ना ज़्यादा मोमेंट होते हैं वहाँ चढ़ रहा है, तो मतलब आपको वहाँ पर उसके ट्रोमा से बचाना है। ट्रोमा मतलब कोई मतलब इंजरी नहीं हो जाए, गिर पड़ नहीं जाए बच्चा, किसी से टकरा नहीं जाए, तो इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए एक सिंपल, जैसे 2 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल समतल जगह होनी चाहिए खेलने कूदने के लिए, वहीं पे चीज़ें डाल दो। ऐसा नहीं कि बच्चा सीढ़ियाँ बार बार चढ़ रहा है, बार बार रोड पे जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे चीज़ों में कूद रहा है, ये कर रहा है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बाहर वाले जो बच्चे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5 या 5 साल के बच्चे, तो बाहर भी जब वो खेलने कूदने जाए तो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को अपनों को समझाना चाहिए, बच्चा भाई ध्यान रखना है, लगते ही गिरने पड़ने का, गिरते ही तुझे बता देना। बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बता नहीं पाते,
1: बता नहीं
0: छोटे
1: पाते,
0: पाते
1: एक डर बच्चों में
0: डर
1: होता है
0: डर
1: कि
0: होता
1: हमें
0: है,
1: अभी डांट पड़ेगी।
0: डांट पड़े।
1: जी डॉक्टर साहब, कई फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा गंभीर रूप ले लेते हैं, तो ऐसे में किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, या हम यूँ कहें कि उनके जो रूटीन काम है उनको लगभग कितना समय लग जाता है कि वापस से वो अपने काम कर सके?
0: हाँ बच्चों में जनरली जैसे फ्रैक्चर, अपन फ्रैक्चर पे बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर होता है जैसे मैंने कोहनी का फ्रैक्चर या हाथ का फ्रैक्चर, कोई सा भी बच्चा है, तो बच्चों में क्या है कि मतलब जो बोन की हड्डी हड्डी जोड़ने की कैपेसिटी बहुत जल्दी होती है, बहुत अच्छा यूनियन होता है,

0: फ्रैक्चर हो गया बच्चों में, आप इमीडिएट डॉक्टर के पास लाए, उसने प्लास्टर लगा दिया, प्लास्टर के लाया गया था, या वो ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया तो ऑपरेशन कर दिया। ये किसी भी कंडीशन में प्लास्टर हुआ, बच्चों में हड्डी बहुत जल्दी जुड़ती है, जनरली बड़ों में तो 4 से 6 महीने में हड्डी जुड़ के मजबूत होती है, बच्चों में 1 से 2 महीने में, दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में बच्चे की हड्डी बहुत अच्छी जुड़ जाती है। और इवन मैं कहूँगा कि बच्चों में हड्डी जुड़ती है तो कभी कभी हल्का सा जब हड्डी जुड़ने लगती है उस टाइम में थोड़ा टेढ़ापन दिखता है, जैसे जो मैं 5 साल के आसपास के बच्चों में कहूँगा, तो उससे आप चिंतित मत हो, कि एक प्रोसेस होती है बॉडी की रिमॉडलिंग, तो वो अगर थोड़ी बहुत भी टेढ़ी दिखती है आपको तो वो रिमॉडलिंग होगी, तो 4 6 महीने से साल भर में वापस उसका सीधा रूप ले लेगी वो।
1: जी
0: तो कभी कभी बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं कि बच्चों में हड्डी टेढ़ी जुड़ गई या नहीं, कितने टाइम पे जुड़ेगी, के क्या करेंगे, तो वो मल्टीपल डॉक्टर से सलाह लेते रहते हैं, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। बच्चों में बहुत अच्छी हड्डी जुड़ती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो हड्डी भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और बहुत अच्छी जुड़ेगी, स्ट्रेंथ पावर पूरी आती है। आप सोचते हो कि यार कि इसमें हड्डी जुड़ गई टूट गई तो इसमें पावर कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होता, पावर बराबर आती है ना। और ऐसे कि आप इसमें पेशेंस रखें और संबंधित डॉक्टर से बराबर कंसल्ट टच में रहे।
1: जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अल्प विराम हम यहाँ लेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं आपके स्वास्थ्य पर आधारित सजीव फोनिन कार्यक्रम आपकी सेहत। और आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर, उनके कारण, लक्षण, बचाव और उपचार। और आज आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा जी। नमस्कार सर, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, एक श्रोता इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
4: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: मैं ये पूछ रहा था, मैं गांव खेड़ा सनोरिया जिला जलावाल तहसील बिड़ाव से बोल रहा हूँ
2: जी। बोलिए, अपना सवाल पूछिए आप डॉक्टर साहब से।
4: मैं ये पूछ साहब से कि मेरे बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ लगी और कोने के बीच में, तो हड्डी करे अलग नहीं हुए तो मतलब हड्डी करे हुई जी थी अंदर।
3: अच्छा,
4: जो जला रहा है थे, वो कच्चा पट्टा भी कराया था और फिर कच्चा बाद फिर पक्का भी कराया
3: जी जी,
4: तो भी वो हाथ में थोड़ी मोच है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हो जाएगी सीधी।
3: हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपका शुभ नाम क्या है जी?
4: जी मैं रामनिवास बोल रहा हूँ।
3: रामनिवास जी, आपके बच्चे के लगे हुए कितने दिन हो गए
4: जी? सर वो तो पक्का पट्टा भी कट गया, मतलब
3: मैं पूछ रहा हूँ कि महीना होगा, दो महीने हुए, तीन महीने हुए, कितने महीने हुए आपके बच्चे के लगे हुए?
4: एक महीना हो गया सर।
3: एक महीना हो गया ना, तो आपका कच्चा प्लास्टर भी लग गया, पक्का भी लग गया, और आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे का हाथ थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है।
4: हाँ सर।
3: हाँ, और बच्चे की उम्र कितनी है?
4: 7 साल।
3: 7 साल, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आपको हल्का सा बच्चे का हाथ टेढ़ा दिख रहा है, तो बच्चे में हड्डी तीन से चार महीने में पूरी हड्डी जुड़ के रिमॉडलिंग जो प्रोसेस जो होता है वो हो जाएगा आपसे, बिल्कुल वो बच्चे की हड्डी सीधी हो जाएगी। अगर हल्का सा टेढ़ापन दिख रहा है तो उसका बिल्कुल चिंता मत करो, आप उस बच्चे का थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मतलब

0: दोबारा उस जगह गिर नहीं जाए, उस जगह पे दोबारा चोट नहीं लग जाए,
1: हाँ सर,
0: है ना। आप एक बच्चों में गए हड्डी जुड़ने की और क्या नाम है मजबूत होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप अभी अभी एक ही महीना हुआ है समय, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। ज़्यादा लगे तो आप उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से आपसे उसमें क्रेप बैंडेज बंधवा लीजिए, है ना। तो
1: हाँ
0: बच्चों को
1: सर,
0: थोड़ा लगे कि मेरे हाथ में लग रही है तो मैं दोबारा गिर नहीं जाऊँ, और वो एकदम अगर ज़्यादा टेढ़ापन नहीं होगा तो बिल्कुल एकदम सीधी होगी, आप बिल्कुल उससे चिंता मत करिए बिल्कुल।
1: और सर वो झूले में, क्या झूले में झूल रहा था ना,
0: हाँ
1: जो वो हाथ वो झूले में ऊपर रह गया, वो नीचे गिर गया, जो झूले में से वो करेक हो गया था, मतलब हट गया।
0: अच्छा, आप
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: सर,
0: चिंता मत करिए, सूजन दर्द नहीं है और ज़्यादा टेढ़ापन नहीं है तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। बराबर डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते रहिए और जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं वैसे करते रहिए, बिल्कुल एकदम आपके बच्चे की हड्डी ठीक हो जाएगी।
1: हाँ सर, डॉक्टर साहब ने यही कहा कि 3-4 महीने में सही हो जाएगा, फिर वो अपने लेवल पे आ जाएगी वो।
0: जी जी जी जी
1: जी रामनिवास जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम।
2: डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि प्लास्टर जब बच्चे के चढ़ता है तो ठीक होने के बाद अगर थोड़ा सा टेढ़ापन है तो उसको ठीक होने में लगभग 6 महीने का समय आप बता रहे हैं कि 6 महीने में बच्चों को लग सकते हैं, तो इस दौरान काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसी जगह प्लास्टर चढ़ा है और ठीक हुआ है लेकिन अगर गलती से उसी जगह फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: हाँ, बच्चे क्या हो कि जनरली जब बच्चे खेलने की प्रवृत्ति तो होती है, मौज मस्ती करने की, तो जनरली जिस जगह पे उसके लगी हुई है वहाँ की हड्डी कमज़ोर है ऑलरेडी, और वो पूरी तरह से अभी मजबूती नहीं ले पाई और किसी वजह से वो गिर गया दोबारा और उसी जगह चोट लग गई तो दोबारा फ्रैक्चर हो जाता है उसमें। तो वही अगर उसमें जाओ वापस दर्द और सूजन ज़्यादा बढ़ गई तो इमीडिएट हाथों हाथ आप वापस डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरे करवाइए कि ज़्यादा बच्चे की हड्डी टेढ़ी तो नहीं हो गई, ज़्यादा उससे टूट के अलग तो नहीं हो गई। अगर हो ऐसा हो गया हो तो फिर वापस अपन उससे ट्रीटमेंट चालू करवाना पड़ेगा अपने को, ना कि उसको अपन वापस लेके घर पे नहीं बैठे, क्योंकि कभी कभी बच्चे में सूजन भी बढ़ जाती है, दर्द भी हो जाता है, तो उस चीज़ को आप हाथों हाथ इमीजिएट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें।
2: जी डॉक्टर साहब, अभी आपका एक सवाल जो श्रोता थे वो पूछ रहे थे कि पहले कच्चा प्लास्टर चढ़ा उसके बाद पक्का प्लास्टर, तो प्लास्टर की क्या प्रोसेस है, कितने तरह के प्लास्टर, किस किस तरह से प्लास्टर चढ़ाया जाता है?
0: ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे सबसे पहले जब लगती है अपने तो इमीडिएट जब लगने से 7 दिन तक का उसका प्रोसेस जो होता है कि इसमें सूजन थोड़ी सी बढ़ सकती है या फिर सूजन धीरे धीरे उसमें 5-7 दिन के अंदर कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले इमीडिएट जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वो जाते ही लगने के बाद कोल्ड स्पंजिंग करवा के उसको हम स्लेब कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, जो कच्चा होता है कि एक तरफ से सपोर्ट होता है एक तरफ से नहीं होता है, जैसे पूरा सर्किल होता है उसमें से हाफ सर्किल में तो हार्ड सपोर्ट होता है जिसमें कॉटन का पूरा लेयर लगा के उसमें नीचे एक आधे पार्ट पर हम सपोर्ट दे देते हैं और आधे पार्ट को हम खुला उसको कॉटन से ही रखते हैं। तो कभी बच्चे में इनकेस सूजन बढ़ती है तो फिर वो उस कॉटन वाले पार्ट से उसका प्रेशर क्रिएट नहीं हो उसमें, तो इसी दौरान हम फिर भी प्लास्टर लगाने के बाद भी हम पेशेंट से पेरेंट्स उसके बच्चे के अटेंडेंट से कहते हैं कि बच्चे की उंगलियाँ हिलवाते रहना और क्या नाम है उस पर उंगली में सूजन देखते रहना, साथ में जो उंगलियाँ होती है या फिर जो उसका डिस्टल पार्ट जिसको कहते हैं दूसरा पार्ट होता है उसमें कोई नीलापन नहीं आ जाए, या बच्चा जा रात में ज़्यादा रो रहा है या फिर है ना बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है तो आप इमीजिएट कंसल्ट करिए, क्योंकि उस दौरान बच्चे के हो सकता है कि प्लास्टर टाइट हो गया, वो अंदर सूजन बढ़ सकती है, तो जब सूजन बढ़ती है प्लास्टर टाइट हो जाता है तो आप उसको इमीजिएट हाथों हाथ दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करो, ना कि उसको लेके दवाई देके वापस ज़्यादा दवाई देके उसका दर्द नहीं दबाए, क्योंकि कभी कभी प्लास्टर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है।
2: जी
0: तो इन चीज़ों से सबसे पहले तो आपने जो पूछा प्लास्टर, तो 7 दिन तक तो अपन कच्चा प्लास्टर रखते हैं उसमें, 7 दिन बाद में जब देखते हैं 7 से 10 दिन बाद में देखते हैं कि उसमें सूजन स्टेबल हो गई या फिर डाउन हो गई या श्रिंक की मतलब कम हो गई और आगे प्लास्टर की ज़रूरत है तो फिर हम उसमें पक्का प्लास्टर करते हैं 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का, डिपेंड करता है फ्रैक्चर कितना ज़्यादा है कितना नहीं है। तो फिर पक्का प्लास्टर करने से उससे क्या है कि पेशेंट का जो बच्चे का वो पार्ट इमोबिलाइज हो जाता है और शरीर अपन कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं साथ में हड्डी जुड़ने की दवाई देते हैं, तो उससे साथ में बच्चे अपने आप भी हड्डी जुड़ती है, तो वो हड्डी थोड़ी मजबूती ले लेती है। तो एक महीने बाद फिर उस प्लास्टर को हम 15 से दिन बाद या एक महीने बाद उस प्लास्टर को हटा के वापस से दोबारा एक्सरे करके देखते हैं, साथ में सूजन देखते हैं। फिर उस बात उसके बाद में फिर पेशेंट के जो बच्चे के जो भी पार्ट है ना उसका मूवमेंट चालू कराते हैं। जैसे कभी कभी 1-1.5 महीने तक प्लास्टर रह जाता है तो बच्चे का जॉइंट का स्टिप हो जाते हैं, बच्चे का बड़ों सबकी, तो उसमें फिजियोथेरेपी एक पार्ट होता है जो

0: फिजियोथेरेपी मतलब मोमेंट चालू कराते हैं, साथ में उसको पार्शियल सपोर्ट भी देते हैं क्रेप बैंडेज के थ्रू या कोई स्लिंग के थ्रू इसे, और धीरे धीरे धीरे बच्चों में तो इन केस 2 से 4 महीने तक पूरी मजबूती लाने की वो करते हैं, और बड़ों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कई बार प्लास्टर 1.5 महीने तक रह जाता है, तो लगभग जो प्लास्टर का समय है वो कितना रहता है, और ठीक होने के बाद लगभग हड्डी को कितने समय में मजबूती मिलती है?
0: हाँ, बच्चों में एज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो मैंने पहले बताया था कि बच्चों में जनरली से 2 से 4 महीने में हड्डी मजबूत हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों में अपर लिम मतलब जो हाथों का जो फ्रैक्चर होता है, तो जनरली वो हाथ एकदम फ्री रहते हैं, उसमें कोई वेट वेट नहीं पड़ता, और पैरों में तो वजन पड़ता है। तो हाथ का फ्रैक्चर में जनरली थोड़ा सा प्लास्टर कम रखते हैं, साथ में उसमें सीलिंग वगैरह देते हैं, क्रेप बैंडेज देते हैं। तो 7 दिन का कच्चा लगाया या महीने भर या 25 दिन का पक्का लगाया, उसके बाद में वापस देखते हैं कि अब इसमें यूनियन नोन आए मतलब जड्डी जुड़ने लग गई, तो हम उसमें जनरली प्लास्टर कम लगाते हैं। लेकिन इन केस पैर का फ्रैक्चर होता है, बच्चा चलने से मानता नहीं, तो उस केस में हम थोड़ा प्लास्टर और बढ़ा देते हैं, क्योंकि पक्के प्लास्टर पर बच्चा चल लेता है और उसकी हड्डी का टेढ़ापन ज़्यादा नहीं बढ़े और थोड़ी हड्डी और मजबूत हो जाए। तो बच्चों में जनरली वही बिल्कुल 1.5 महीने के बाद में प्लास्टर लगाने से बचते हैं, साथ में उसकी फिजियोथेरेपी चालू कराते हैं, और एक कुछ फंक्शनल कास्ट होते हैं, फंक्शनल कास्ट का मतलब जिससे आप काम कर सकते हो, चल सकते हो, काम करते हो, तो ज़रूरत पड़ी थी तो वो लगाते हैं आगे के लिए, नहीं तो 4 से 6 महीने में धीरे धीरे हड्डी मजबूत हो जाती है और वापस पावर बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कई बार बच्चों के पैरों में भी फ्रैक्चर हो जाता है, और हम सभी जानते हैं कि बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, अगर हम उनसे उम्मीद करें कि वो एक जगह बैठकर आराम करें तो ये चीज़ शायद इम्पॉसिबल हमें लगेगी, क्योंकि बच्चों का एक जगह बैठकर रेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ है और पक्का प्लास्टर बंधा है, तो क्या ऐसे में बच्चा चल फिर सकता है? क्योंकि कई बच्चे मानते नहीं है उनका चलना, या थोड़ा बहुत वो हलचल कर ही लेते हैं, तो ऐसे में जो फ्रैक्चर है उस पर कोई दिक्कत नहीं होती है?
0: हाँ, जनरली फ्रैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा फ्रैक्चर है। जब हम कच्चा प्लास्टर बांधते हैं उस टाइम पे तो बिल्कुल बच्चे से मना कर देते हैं या बच्चे के पेरेंट्स से मना कर देते हैं, इसको बिल्कुल वेट नहीं दिलाना। उसके बाद जब पक्का प्लास्टर बांधते हैं तो इवन कोशिश करते हैं कि 10 से 15 दिन इस पर वजन नहीं दे, उसके बाद में फिर धीरे धीरे धीरे पार्शियल वेट करवाते हैं, एक साथ सडन नहीं कर। पार्शियल वेट का मतलब भाई पेरेंट्स के आप ध्यान रखो, जब भी चलने की कोशिश करें तो आप इसको सपोर्ट दो। अगर इन केस वो पेन फ्री रहता है, दर्द नहीं होता ज़्यादा, उस टाइम पे मैंने उसको पेन किलर भी SOS कर देते हैं, मतलब SOS मतलब जब जरूरत हो जब ही दो, बाकी तो पेशेंट बच्चे को पता चलना चाहिए, पेरेंट्स को मरीज को पता चलना चाहिए मेरे दर्द कितना हो रहा है। इन केस वो चलने पर उसका दर्द बढ़ रहा है या रो रहा है बच्चा, तो आप वजन में नहीं दिलाए, और वो तो आराम से थोड़ा बहुत चल पा रहा है पार्शियल वेट से, तो बच्चे आराम से उस पर चल सकते हैं।
1: तो जी तो आपने बताया कि किस तरह से जो प्लास्टर का टाइम होता है, और 4 से 6 महीने आप बता रहे हैं कि लगभग बच्चों में 4 महीने में हड्डी मजबूत हो जाती है, लेकिन फिर भी कई बार पेरेंट्स जो है उनके दिमाग में कई तरह की भ्रांतियाँ हम इनको कह सकते हैं, या जो ये चीज़ कहाँ तक हम सच माने, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार हड्डी अगर फ्रैक्चर हो चुकी है तो उसी जगह से बच्चा अपने जो रूटीन काम है वो आराम से कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि लोगों के दिमाग में कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि अगर किसी जगह पर फ्रैक्चर हुआ है तो वो जगह कमज़ोर हो जाती है, वो अपने रूटीन काम है जो कर नहीं पाते, तो ये बात हम सच माने या सिर्फ एक भ्रांतियाँ ये है?
0: नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। बच्चों में जितनी भी हड्डी टूटती है सब जुड़ती है और पावर पूरी आती है। कभी कभी स्पेशली एक दो जगह ऐसी होती है जहाँ पर हड्डी टूटती है, अगर वो सही नहीं जुड़ पाती है तो थोड़ा बहुत टेढ़ापन रह जाता है, जैसे कोहनी का फ्रैक्चर होता है। जनरली मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर बच्चों में कोहनियों का होता है। कोहनियों के फ्रैक्चर में अगर थोड़ी सी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती है तो हल्का सा थोड़ा टेढ़ा दिख सकता है वो, बाकी फंक्शन तो जो उसके काम करने की पावर तो पूरी आती है, बिल्कुल भी बच्चा उसी पावर से काम करता है जैसे दूसरे हाथ से करता है, तो इसमें बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। जैसे अभी रामनिवास जी थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि 1 महीने बाद मेरे बच्चे की हड्डी थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। ज़्यादा अगर टेढ़ापन दिखता है तो इमीडिएट वही डॉक्टर अपने आप ही कंसल्ट करते थे भाई इसमें ज़्यादा टेढ़ापन है तो इसमें सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा, और कम टेढ़ापन है तो बच्चों में वही पूरी तरह से हड्डी जुड़ती है, वही रिमॉडलिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कि रिमॉडलिंग होकर बच्चे की हड्डी सीधी भी हो जाएगी और पावर भी उतनी आएगी। लेकिन जैसे अपने कुछ रिश्तेदार पास पड़ोस वाले गए देते हैं तो कि तेरे बच्चे की तो टेढ़ी दिख रही है, ढंग से नहीं जुड़ रही है, एक्सरे भी देखते रहते हैं, काफ़ी लोग एक्सरे देख देख के किसी चीज़ को वो करते रहते हैं, अच्छी हड्डी अभी नहीं जुड़ रही, ऐसी नहीं जुड़ रही, तो इस पर ज़्यादा चिंतित नहीं हुए। जो आपका संबंधित डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें, उसकी पूरी सलाह माने, और इधर उधर जो अपन

0: कि अपना हमें ग्रामीण क्षेत्र के नुस्खे करते रहते हैं, उनसे थोड़ा बचाव करें।
1: जी जी बिल्कुल, जो इधर उधर की जो बातें हैं जो हमारे काम की नहीं है, या हम ये कहें कि भ्रांतियाँ हैं जो कई बार हमारा नुकसान कर देती हैं। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर्स की बात है जो हम कर ही रहे हैं, तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि कई किस्से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ऑपरेशन की कंडीशन भी हो जाती है, तो ऑपरेशन जो है बच्चों में किन कंडीशन में किया जा सकता है?
0: हाँ, हमारे जो फ्रैक्चर पैटर्न होता है, जैसे बच्चों में हड्डी फ्रैक्चर हुई तो फ्रैक्चर पैटर्न, जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं फ्रैक्चर में, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, ऐसे बच्चों में एक फ्रैक्चर होता है जिसका नाम होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, बच्चे की हड्डियाँ लचीली होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम पेरिस्टम कहते हैं, वो झिल्ली बहुत मोटी होती है, तो बच्चे की हड्डी टूट जाती है लेकिन वो पेरिस्टम इंटेक्ट रहती है, तो उस केस में हम बच्चे को रिडक्शन करके खींच के प्लास्टर लगा देते हैं, आराम से कच्चा पहले तो, और फिर उसके बाद पक्का कर लेते हैं और हड्डी जुड़ जाती है। जैसे रामनिवास जी के केस के साथ यही हुआ होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, और कभी कभी वो पेरिस्टम भी टूट के और ओवरलैप हो जाती है हड्डी, टूट के ओवरलैप मतलब टूट के बिल्कुल दूर हो गई, और ऐसे ऐसी हड्डी रहती तो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, जब उस कंडीशन में रिडक्शन प्रॉपर नहीं आ पाता है, बिल्कुल ऐसे नहीं हो पाती, तो उस केस में हम आजकल सर्जिकल टेक्निक बहुत अच्छी अच्छी आ गई है, सियाम मशीन जैसी मशीनें आ गई है, तो उसमें

0: हम कहें कि 70 से 80% जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से हो रही है। और आजकल के बच्चों का जो खाने का जो अपना जो शौक है वो फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।
1: ये बहुत ही ज़्यादा समस्या है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले तो बच्चों में क्या होता है कि आजकल के बच्चे आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अपना सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन मोबाइल आ गया।
0: जी जी बिल्कुल,
1: है ना। कोई भी बच्चा खाना रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले उसको मोबाइल दिखा देते हैं और खाना खा लेता है वो। और बाकी जब मोबाइल हाथ में दे दोगे तो बच्चा घर के बाहर ही नहीं निकलेगा और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसकी वजह से उसकी जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा साथ में फास्ट फूड खाएगा तो बच्चों क्या है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है, ओबेसिटी मोटापा बढ़ जाएगा बच्चों में, या फिर उसकी हड्डियाँ कमजोर रहेगी, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, तो बच्चों में हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। तो छोटे से जब भी कभी वो बच्चा जो फिजिकली इनएक्टिव है फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, जहाँ पर प्रॉपर अपन विटामिन डी या कैल्शियम का सोर्स नहीं मिल पा रहा है, इवन वो सोर्स भी मिल जाते हैं लेकिन फिजिकल पूरे एक्टिव नहीं हो पाते बच्चे, स्पोर्ट्स में आउटडोर एक्टिविटी खेलने कूदने में नहीं रह पाते, तो उनकी हड्डियाँ कमजोर रहती है, जनरली हल्के से गिरने से भी हड्डियाँ टूट जाती है उसमें। तो सबसे पहले मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखें। जैसे आजकल स्कूल में भी स्पेशली इसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्कूल वाले भी प्रोग्राम चलाते हैं, स्पोर्ट्स के जो पीरियड्स आते हैं तो उसमें बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। इधर से घर पे भी जब बच्चे आते हैं तो घर पे भी आराम से बच्चों को स्पोर्ट्स से मतलब सुबह शाम योगा मतलब एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह जो भी आप आउटडोर इनडोर एक्टिविटी है उसको करवाओ, ना कि बच्चों को मोबाइल देख के स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम वे करो। हाँ, उसके एजुकेशन से संबंधित जो भी टाइम है वो स्क्रीन पे कर लो, बाकी आउटडोर एक्टिविटी बच्चे ज़्यादा करेंगे तो फिजिकली एक्टिव रहेंगे। और सबसे ज़्यादा अपना जो विटामिन डी का सोर्स होता है सन, धूप, धूप का एक्सपोजर भी बच्चों को जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे कभी कभी इंडोर में रह रहे के विटामिन डी पूरे प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चों में जोड़ों में दर्द रहता है, थकावट रहती है, ऐसा क्या नाम है, इसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पा रही, तो हमें देखने को मिलता है बच्चों में विटामिन डी कैल्शियम की कमी हो रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: जी, आदरणीय मैडम जी को और डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।
2: जी मैं राम जी गर्ग रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी
0: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्लास्टर में ऐसी कौन सी चीज होती है कि वो हड्डियाँ जुड़ जाती हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लास्टर भर बांध दिया जाता है।
1: राम जी, आपने पूछा प्लास्टर में ऐसी कौन सी चीज होती है, तो प्लास्टर में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो सीधी हड्डी को जोड़े। प्लास्टर एक मैकेनिज्म होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो हार्ड सरफेस जो रहती है तो उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देती है, और इमोबिलाइज का मतलब उसको उसका मोमेंट नहीं होने देती है। साथ में जो अपन कैल्शियम प्लस जब शरीर की जो बॉडी की क्षमता होती है वो हड्डी जोड़ती है, प्लास्टर कभी हड्डी नहीं जोड़ता है। प्लास्टर तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, है ना। प्लास्टर में आप सोचो कि प्लास्टर लगाने के से हड्डी, भाई प्लास्टर की कोई पार्ट है ना बॉडी के अंदर जाते होंगे और फिर वो हड्डी जोड़ते होंगे। प्लास्टर इज पार्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, मतलब उसको मोमेंट को रोकने के लिए, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए हड्डी को किसके नहीं उसके लिए प्लास्टर लगाया जाता है, कच्चा हो या पक्का हो।
2: जी जी, तो उसको पहले सेट करते होंगे हाथ पर जहां टूटता है कि ऐसे प्लास्टर बांधते हैं।
1: जी आपने सही क्वेश्चन पूछा कि आपने सबसे पहले हड्डी अगर बच्चे की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रह रही है तो उसको पहले हम है ना बच्चे को देख के एनेस्थेसिया या जो भी देख के उसको हड्डी को सेट करके और फिर उसके बाद में उसमें प्लास्टर लगाया जाता है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर और क्या क्या समस्या उनमें हो सकती है, तो लगभग कार्यक्रम के अब हम अंत में हैं, तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे छोटे बच्चों को हम फ्रैक्चर ना हो, छोटे बच्चों को फ्रैक्चर से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचाव कर सकते हैं?
1: बचाव के लिए तो वही है कि बच्चों की देखभाल सबसे मेन चीज़ है, बच्चों की देखभाल। बच्चा इवन में तो कहता हूँ बच्चों को दिन में 3 बार, छोटे बच्चे जो होते हैं जो अपने इसमें होते हैं, दिन में 3 बार चेक करो, जैसे सुबह शाम बच्चे को एक दिन में 1 बार तो नहीं लाते, उस टाइम पे पूरी बॉडी चेकअप करो। इधर से क्या नाम है, जब बच्चा बाहर आउटडोर एक्टिविटी खेलने जाता है तो शाम को घर पर आता है, जब उस टाइम पर उसको ध्यान रखो बच्चा कहीं उसके कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं सूजन तो नहीं है, या इवन बच्चा कोई चीज़ छुपा रहा है तो उसको थोड़ा आप मॉनिटरिंग, अल्टीमेट अपने पेरेंट्स को इनको ध्यान रखना पड़ता है। और घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन चीज़ों से

0: अपन बच्चे की, जैसे बच्चों में सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी है तो उस पे चढ़ने से गिरने से हो सकता है, पलंग पे से गिरने से गिर सकता है, डोली पे से गिरने से हो सकता है। इन चीज़ों का तो देखभाल सबसे मेन चीज़ है, बच्चों की देखभाल। बच्चा इवन मैं तो कहता हूँ बच्चों को दिन में 3 बार, छोटे बच्चे जो होते हैं जो अपने इसमें होते हैं, दिन में 3 बार चेक करो। जैसे सुबह शाम बच्चे को से एक दिन में 1 बार तो नहलाते, उस टाइम पे पूरी बॉडी चेकअप करो। इधर से क्या नाम है, जब बच्चा बाहर आउटडोर एक्टिविटी खेलने जाता है तो शाम को घर पे आता है, जब उस टाइम पे उसको ध्यान रखो, बच्चा कहीं उसके कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं सूजन तो नहीं है, या इवन बच्चा कोई चीज़ छुपा रहा है तो उसको थोड़ा आप मॉनिटरिंग, अल्टीमेट अपना पेरेंट्स को इनको ध्यान रखना पड़ता है। और घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन चीज़ों से अपन बच्चे की, जैसे बच्चों में सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी है तो उस पे चढ़ने से गिरने से हो सकता है, पलंग पे से गिर सकता है, डोली पे से गिरने से हो सकता है। इन चीज़ों का तो मैंने फैमिली, एक कंपाउंड फैमिली होती है, जो फैमिली के मेंबर प्लस आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। साथ में अपन जो अभी बात कर रहे थे विटामिन डी, कैल्शियम की सोर्स, जो बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हो तो वो स्पोर्ट्स या आउटडोर एक्टिविटी से थोड़ा सा हेल्थी बच्चा रहेगा तो जनरली उसमें फ्रैक्चर कम होगा।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़े और बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर्स के बारे में जो

0: दिन कार्यक्रम आपकी सेहत आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
1: देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो

0: आवेदन ऑनलाइन हो इससे सुनिश्चित, अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
1: देश में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित चार पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिक और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना

0: कल 9,703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर बी एल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3,638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन, मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जब शोर भरी दुनिया भी विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें,

0: रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: यह है विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही।

आज के फनकार आज के फनकार

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: एक

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे
0: नाम
1: वो
0: मतलब।
1: नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

2009 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

किए चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में।
1: जी।
0: अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप?

0: सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं, बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
1: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में।
1: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
0: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
1: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
0: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम लोग तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
1: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
0: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
1: अच्छा,
0: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
1: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
0: हमारे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
0: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
1: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
0: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर चलता नहीं था, तो हम लोग उस टाइम में ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
1: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
0: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
1: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जिमस फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं, हमारे ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूचरंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं उसको, मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज का सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखिए बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार

0: में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा काबा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात मेरे को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। विविध भारती
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: दिल दिल का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम डेमाजी असम से विमल बसुंतर बोल रहे हैं। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए ऐसे चलता है।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हूँ, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुनके मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बात जिद्दे हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीले धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है। हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल?

0: खेल इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे?
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं। खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए?
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाए।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और

0: पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
1: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
0: बनाती भी है और बजाती भी है।
1: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
0: बम्बू से बनाता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। चा...

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो

0: तो फिलहाल धूप निकल रही है
1: हाँ, तो दीपक जी और क्या करती हैं, इसके अलावा कोई और शौक है
0: जी। मैं
1: आपके?
0: खेती की सारी करता हूँ खाली,
1: बस, और कुछ
0: और
1: नहीं?
0: रेडियो सुनता हूँ।
1: रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
0: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं ना रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
1: क्रिकेट की कमेंट्री। तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था
0: थोड़ा
1: आपका?
0: हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे, ये दोनों
1: अरे
0: खेलना पसंद है मुझे जरा।
1: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
0: खो खो।
1: खो खो। बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो,
0: जी
1: है ना? कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
0: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे बता दे वो।
1: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
0: खेती, घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा, पढ़ाई की आपने,
0: पढ़ाई 12वीं तक की। बिल्कुल
1: अच्छी बात है। चलिए अभी
0: बिल्कुल।
1: बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
1: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: ये

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: Taranga, taranga.
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

ताजमहल फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: लगता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों

0: की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर

0: चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी।
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: दाना चुनकर लाती चींटी।
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
0: घर को खूब सजाती चींटी।
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे।
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नहीं कभी घबराती चींटी।
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखला।
1: इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं, है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 103.2 MHz पर। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।

तारे जमी पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

लैला मजनू शीरी फरहा ही रांझा

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में, संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है। श्री अठावले ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और मेक इन इंडिया अभियान ने तेज गति पकड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय भी समाज कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। जनगणना 2027 पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग की जानकारी मिलेगी, जिससे केंद्र सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और मदद होगी।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, एससी एसटी को, ओबीसी को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई

बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में ये प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और 12 के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए ये प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और ना ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्मपत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएँ

भी बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है, एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो, एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोजाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है, तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस समय जहाँ से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहाँ से ये टिप्पणियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर आप आइए और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहाँ यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएँ जन्म लेती हैं, सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक श्रोता ने लिखा है वही वाह, गानों की तो लंबी फहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है, ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई। बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी लेकिन ना कुछ न कुछ तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए, तो देखा कि उनमें ये शब्द है तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा, कलाकारों के नाम ज़रा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारिख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियाँ भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार। और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि फला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिक, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब ज़रा कुछ और टिप्पणियाँ भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, ज़रा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आँखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविज़न पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना।

0: हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों की बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ

अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी

0: और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज़ में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गाँव

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर

रही है। कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना भाई। ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और

गीतकार एस एच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है, शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत

मिस्ट्री क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौआ समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, मुकेश की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियाँ भी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन

0: गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी

0: और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने

0: सपा की परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: कार्यक्रम सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी जी। क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? गृहिणी हैं? क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी क्या बात है,
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले,
0: जी,
1: खाकी
0: कवर जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूं।

0: हमें चांदनी जी,
1: जी
0: आज
1: जी,
0: बताइए
1: जी,
0: आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है, मैं ना भूलूंगा,
0: मैं ना भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नोजय सवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नोजय सवाल। धन्नोजय, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं
0: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियाँ हैं, वो दिल्ली में है, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए, आप ही की
1: तुम बिन।
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ,
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी
0: हूँ,
1: पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, हुआ ये दिल बेगाना है,

0: बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है,
1: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
1: जी बेहद सुंदर गीत है, तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मस्त हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, काटी चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती चौक है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ,
0: हैं, सभी का एक
1: हाँ,
0: अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ
0: जी
1: पे।
0: जी तो मैं ये
1: हाँ
0: पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे
1: हाँ
0: थे तो गर्मी की
1: हाँ
0: छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना। तो उन दिनों
1: हाँ
0: में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते तो पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ
0: करते
1: बहुत
0: थे?
1: बहुत हाँ, ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत
0: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज बताइए, आप
1: हाँ,
0: कौन सा
1: मुझे
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए
1: बहुत
0: आप सुनना चाहती हैं।
1: पसंद है यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली एक गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो, छाया हो।

0: मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो। प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: बना,

0: डरते, हाँ डरते बनाते
1: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
0: हैं? किलो से, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
1: अच्छा
0: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
1: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
0: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
1: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: देवा श्री गणेश ये गाना सुनना है।
1: बिल्कुल,
0: अग्निपथ 2 का
1: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। हाँ
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली कोटपुतली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में?

0: पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए? इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती, आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर वो बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है।
0: अच्छा।
1: और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है,
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ दीदी।
0: जी तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं।
0: जी
1: देवर के एक है, एक मेरा हूँ।
0: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी।
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना था ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
1: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
0: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से

0: 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा, ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी

तो करवाओ। प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। उफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

0: रे।
1: अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे।

बड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक ओर बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है, तुम भी ना। कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए

काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चला।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी ऐसा

मिलिए ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात

0: सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी के कारण उन अनेक बच्चों के अंदर जो है बचपना उनसे छीन लिया गया है।
1: बिल्कुल।
0: इस दिन की शुरुआत पहली बार 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा की गई थी।
1: बिल्कुल, इस अभियान में बाल श्रम के खिलाफ जो है वो एक वैश्विक प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्ता शिक्षा की मांग करता है। साथ ही विश्व स्तर पर आज भी लाखों

0: और आज के दिन ये भी हम संकल्प लें कि हम किसी भी बच्चे को मजदूरी करते देख उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे और बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक अंतराल

0: तो चलिए साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक कार्यक्रम में। इस मनमोहक गीत के बाद करते हैं आपसे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस पर। दोस्तों, यह दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों का जश्न मनाना, उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और समाज के फैले गई जो गलत फहमियाँ हैं और अंधविश्वास हैं उनको दूर करना है। तो सबसे पहले कन्हैया जी, आप हमारे साथियों को बताइए कि रंगहीनता एल्बिनिज्म क्या होता है।
1: बिल्कुल शिवादी, आपने कहा रंगहीनता एल्बिनिज्म एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नामक रंगद्रव्य की मात्रा जो है बहुत कम या बिल्कुल नहीं बनती। मेलानिन ही हमारी त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। इसकी कमी के कारण रंगहीनता से प्रभावित व्यक्तियों की त्वचा, बाल और आंखें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक हल्के रंग की दिखाई देती हैं।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को बता दें कि लक्षण क्या होते हैं इसके। तो जो त्वचा होती है इसकी बात करें तो त्वचा का रंग जो है अत्यधिक सफ़ेद या फिर हल्का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सनबर्न, टैनिंग इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा यदि ज़्यादा उसमें हमारी जो त्वचा है इसका रंग ज़्यादा मतलब वो हो जाए तो उससे ऐसा भी होता है कि स्किन कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं।
1: शिवाजी सही कहा आपने। और सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक यह है कि रंगहीन

0: चेशी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: चलिए युवा डायरी से लिए के मैं आज हम आपके लिए लेकर आए चित्रेश धाकड़ जी से JEE Advanced 2026 IIT से कन्हैया की बातचीत।

0: चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम हमारी अगली चर्चा की ओर, विश्व रक्तदान दिवस पर। साथियों, हर साल 14 जून को रक्तदान दिवस मनाने के लिए दुनिया एकजुट होती है। यह उन लाखों निशुल्क रक्तदानों को समर्पित एवं वैश्विक दिवस है जिनकी उदारता से प्रतिदिन जीवन बचते हैं।
1: बिल्कुल, प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने और अनगिनत लोगों का जीवन बचाने में योगदान देते हैं। साथ ही यह दिवस समाज में सुरक्षित और नियमित रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण अवसर देता है।
0: बिल्कुल कन्हैया जी, हम इसे रक्तदान को महादान कहते हैं। ये किसी व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2004 में किया गया था। ये दिन महान वैज्ञानिक कर्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी।
1: बिल्कुल, और शिवादी जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जब रक्त की आवश्यकता अचानक पड़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे सड़क दुर्घटनाएं, बड़ी शल्य चिकित्सा, प्रसव के दौरान जटिलताएं, थैलेसीमिया, कैंसर तथा अन्य जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं उनसे पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे में रक्त का एक एक यूनिट किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है।
0: बिल्कुल, और कन्हैया जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रक्त एक ऐसी चीज है जिसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसका एक मात्र स्रोत मानव शरीर ही है।
1: बिल्कुल,
0: और इस वर्ष का जो यदि हम अभियान की बात करें तो मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं पर निर्भर है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक दान मात्र एक चिकित्सीय कार्य नहीं है बल्कि यह एकजुटता, करुणता और सामूहिक जिम्मेदारी की भी एक सशक्त अभिव्यक्ति का उदाहरण है।
1: बिल्कुल शिवाजी, आपने सही कहा, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों के जीवन को बचाने में सहायता दे सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल। अच्छा कन्हैया जी, एक बात और मैं हमारे श्रोताओं से और आपसे करना चाहूंगी
1: जी,
0: कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि रक्तदान जो है इसे करने से हमारा शरीर जो है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी कुछ ही समय में पूरी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में ही की जाती है।

0: बढ़ता जाता है। सामान्यतः 18 से 65 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से पहले स्वास्थ्य की जांच होती है ताकि जो रक्तदाता है और प्रत्येक करता है दोनों को कोई मुश्किलें ना आए।
1: और विश्व रक्तदाता दिवस जो है हमें यह संदेश भी देता है कि रक्तदान को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहिए। यदि प्रत्येक योग्य व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान करे तो देश में रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है और समस्या से काफी हद तक दूर किया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और यदि हम रक्तदान की बात ही कर रहे हैं तो रक्तदान करते हैं हम तो हम मानवता की सेवा करते हैं। इसमें ना कोई जाति देखी जाती है, ना धर्म, ना भाषा, ना लिंग, ना ही कोई क्षेत्र। रक्त एक बूंद केवल जीवन बचाने के लिए होता है।
1: बिल्कुल।
0: और आज देश भर में हम देख रहे हैं कि अनेक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। युवा वर्ग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहा है। यह बेहद खुशी की बात है कि समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है। लेकिन अभी भी सुरक्षित रक्त की आवश्यकता पूरी तरह जो है समाप्त नहीं।

0: से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, योग आध्यात्मिक जागरण। साथियों, योग एक

0: हमारी अगली चर्चा की ओर, योग आध्यात्मिक जागरण। साथियों, योग एक प्राचीन साधन है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से पूरे जाकर चेतना का सर्वोच्च स्तर तक ले जाती है।
1: बिल्कुल शिवा जी, आपने सही कहा। आज का जो हमारा जीवन है, भाग दौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। भौतिक सुख सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की कमी भी हमें महसूस होती जा रही है। ऐसे समय में योग हमें भीतर की ओर देखने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में प्रेरणा देता है। और योग का आध्यात्मिक पक्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। जब हम नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और योगाभ्यास करते हैं, तो मन की चंचलता कम होने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति आत्मचिंतन की ओर अग्रसर होता है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य तथा आत्मविश्वास का विकास होता है।

0: के बाद फिर आपका बैंक विवरण उससे भी ज्यादा आवश्यक थे। और यदि हम बात करें तो वित्तीय सहायता क्या प्रदान की जाएगी, तो जिन किसी भी भाइयों ने यूपीएससी का प्रीलियम्स क्लियर किया हुआ है वो 1,00,000 की सहायता प्रदान करेगी सरकार उन्हें इंटरव्यू और मेंस के लिए, स्टेट वालों को 50,000 और एसएससी के लिए 25,000। इसके लिए आपको पोर्टल पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन और अप्लाई करना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट भी मांगे वो आपको सब देने होंगे।
1: बिल्कुल
0: साथियों, इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं वो कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से वंचित रह जाते हैं, तो उन्हें जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है।

0: दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव हमारी मेल आईडी airjhl1993@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का, तो दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाज़त आपके अपने रेडियो साथी कन्हैया और
1: शिवाधी को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको शेष रहे कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

आपसे थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

सात बजे आप आनंद लेंगे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का, और 7:10 पर सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला परिचर्चा जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस। समय याद रखिए 7:10, इसे हम दिल्ली से रिले करेंगे। सात बजकर 45 पर हमारे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल। इसमें चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस, कृषि अवसंरचना कोष, डिजिटल मंडी, ई नाम। इसी में किसान साथी सुनेंगे राजू धाकड़ कृषक सलाहकार झालरापाटन से ली गई भेंटवार्ता, जून माह में कैसे लगाएं सब्जियों की नर्सरी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर आप लेंगे जानकारी, और साथ ही कृषक साथी सुनेंगे लोक संगीत के साथ मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक।

फिल्म संगीत का समय रहेगा 8:15 और रात 9 बजे श्रोता सुनेंगे गैर फिल्मी गीत गजल और भजन पर आधारित कार्यक्रम सबरस। ये थी शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने

के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्व

उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के आईटीआई तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि

उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के आईटीआई तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: किशोर कुमार और आशा

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म खिलौना से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण

0: श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी।
1: मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्ययोजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण भी देने को कहा। डॉ. बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, SC ST को OBC को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: आज बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार है। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर

0: भागों में मेघगर्जन देश आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में एक प्रयोग की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
1: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट अ कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों

आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार

विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों

0: परंडरी रासायनिक दवाइयां कम काम लेवण और प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। श्री बागड़े किसानों रसायन कामलियां बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावण माए मदद करण रियरच कीनी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य जीवामृत बीजामृत और मल्चिंग सरीखा प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो के मौजूदा दौर माए रासायनिक खाद मोटी तादाद माए काम लेवणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
1: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब दो ढाई फीट का तीन फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
0: श्री शर्मा कहो के किसाना री बरकत सारू राज्य सरकार पानी और बिजली री उपलब्धता तय करण री विगतवार योजना बनाई है। ई मौके गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कहो के रासायनिक खेती रा कारण खेता माए मिट्टी माए ऑर्गेनिक कार्बन घणो कम वेक्यो है। बूंदी जिला री केशव राय पाटन तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियां रा कामकाज माए लापरवाही रा आरोप माए बीडीओ और 11 ग्राम विकास अधिकारियां ने मुअत्तल कर दिया चिया है। आ ग्राम विकास अधिकारियां रे खिलाफ 16 CCA रातेत विभागीय कार्रवाई शुरू करण रा हुकम दिया चिया है। प्रदेश माए आज शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किया। 15 जुलाई ताई चालन वाला आ शिविरां रे जरिए लोगां ने न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो आसानी दियो जा रियो है और न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम मौके ही निपटाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए शहरी सेवा शिविर री शुरुआत कीनी। ई मौके वे लोगाओं शिविर माए मुहैया कराया जा रहा सुविधा नी जानकारी लीनी और जमीरा पट्टा दीना। मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट UG परीक्षा माए अब विद्यार्थियों ने 15 मिनट बत्ता मिलेला। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA रे मुजब अब 195 मिनट री आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊ सिंजा 5:15 ताई ली जावेला। दूजीगानी कोटा विश्वविद्यालय री ओरू राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा SAT 2026 इस साल 6 सितंबर न ली जावेला। इसारू 14 जून 15 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकाओं अर्जी दी जा सकेला। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर BP सारस्वत बतायो कि इन दफा आ परीक्षा राजस्थानी सिंधी पंजाबी फारसी और उर्दू समेत 35 विषया माए ली जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सड़का माथे हिफाजत न जनता रो आंदोलन बनावण सारू सगलाओं जिम्मेदारी सागे काम करण बाबत कहो है। वह आज जयपुर माए स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल री मीटिंग माए बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री सड़का माथे हिफाजत रा जतन असरदार तरीकाओं करण सड़क हादसा री जदमाए आवण वाला ने तुरंत मदद और बेहतर इलाज मुहैया करावण राई हुकम दीना। वह सड़क सुरक्षा मित्रा ने प्रोत्साहन राशि सागे जरूरी साजो सामान देवण बाबती कहो। डॉक्टर बैरवा जनता सारू आसान और आरामदायक सफर तय करण सारू बसां री फिटनेस जांच करावण और बस चलावण वाला रा स्वास्थ्य री जांच करावण माथे जोर दीनो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले नौजवानों नशो नी करण बाबत कहो है।

0: तापमान कुछ स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में एक वेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
1: एशियाई खेलों में सोनारो तमगो जीतण वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंकया है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावण री सिखावण देवण मायला क्योड़ा हा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवण पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल में महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तर
0: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में एक दर्जन तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कुछ स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में एक वेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
1: एशियाई खेलों में सोनारो तमगो जीतण वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंकया है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावण री सिखावण देवण मायला क्योड़ा हा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवण पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंप

0: मुकेश की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा बहती है। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना, ये गीत गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: इसे हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक और हजारों
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: का दिखाई देता है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपत्ति गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई,

उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा,

0: फार्मर को रोजगार मिलता है तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है खूबी है और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि भारत की छवि बदल रही है भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा बड़ा स्टेक होल्डर होगा और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे
1: जी बिल्कुल इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी छोटे राज्यों की बात करें बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं
0: देखिए इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंदन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन कुछ उसके बारे में बताएं
0: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे बाकी मन से विचार से आत्मा से सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे भारतीय परंपराओं के प्रति सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ

के लिए आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी।

0: और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर काफी श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में

पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली,

0: गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ

0: गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: श्रोता सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष श्रृंखला परिचर्चा जन विश्वास। इसे हम दिल्ली से रिले कर रहे थे FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 7:45 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल।

कृषक चौपाल कार्यक्रम सुनबा वाला सभी कृष्ण भाई बिना ने आपका साथी बद्री लाल लोधा को घणो घणो राम राम। सात्या हूँ, मौसम भी थोड़ी थोड़ी देर में बदल जावे। सुबह कशो चोर, दोपहर में कशोर और दंडल दंडलता और दूसरो ही रूप दिखावे दे। अब देखो नहीं, सुबह तेज गर्मी के लारे शुरुआत हुई तो दोपहर में अलग और अब कहीं कहीं तेज हवा के लारे सुहावना मौसम हो गया। तो यो सब अपने लेके संदेश है सात्या हूँ, खेत तैयार कर लावा, खाद बीज की व्यवस्था कर लावा, कमर कस के तैयार हो जावा बिल्कुल, ताकि जैसे ही बावनी होवे और अपन बना देरी करिया बुआई चालू कर देवा। तो इस समय अपन खाद बीज की तैयारी कर लेवा, घर को बीज है तो वो की सार संभाल कर लेवा कि कहीं वो सूढ़ियों तो नहीं है या कहीं कीड़ा तो नहीं लाग रहा है, खराब तो नहीं हो गया है, ताकि उन्हें चेक भी कर ला सकते हूँ। चेक ऐसा करा कि जैसे मान लो अपन ने 10 या 20 दाना उनमें से छाट लिया, उनमें से एक मुट्ठी भर के 10-20 दाना लेवा और उनके तई एक पोटली में बांध के, कपड़ा में बांध के, टाट बांध के और नमी वाली जगह पर रख दा, ताकि वे 2-4 दिन वहाँ नमी की स्थान पर रहे और याद पड़ जाए उसे कि कितना दाना अंकुरित हो जाए। फिर जितना दाना अंकुरित हो जाए गिन करके देख ला कि 20 में 7 ना हो या 10 में 7 ना हो या, तो फिर जितना परसेंटेज बने उस हिसाब से ही वो कि बीज की तरह रखना, ताकि अपने बीज जो अपन लेवा या वो जो बीज या तो ज़्यादा बोदा या कम बोदा वो हिसाब से नहीं करके जितना दाना उग गया है वो हिसाब से अपन बीज की दर रखाना, ताकि वो बीज अपने फालतू नहीं जावे। तो अपन के ताई समय पर चेक कर लेना चाहिए ताकि अपना बीज की जरूरत है अपना खेत में। और सत्या हूँ कार्यक्रम में और आगे बढ़ा और बात कराएंगे खेती बाड़ी की, पर इससे पहले सुनाइयो संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सत्या हूँ बात करा नयो जमानो है डिजिटल को दम जमानो है तो अपन डिजिटल मंडी की बात करा यानी कि इनाम डिजिटल मंडी इनाम सत्य डिजिटल मंडी से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार जो किसान भाई बहन इनके लेके ऑनलाइन कृषि बाज़ार मंच है। इके जरिए साथी घर बैठे ही किसान अपनी फसल व्यापारियों के ताई बेच सके जिससे बिचौलिया से छुटकारा मिल सके और बिचौलिया जो कमीशन लेवे वो कमीशन की भी बचत हो सके वो कमीशन से तो अपने पास ही यानी कि बचत हो जावे ज़्यादा लाभ मिले अपने तो पारदर्शी तरीका से बेहतर तरीका से अपना सीधो बैंक में अपन के ताई जो अपन

0: ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਰਸਰੀ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਛਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੂਨ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਔਰ ਕਦ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਕੀ ਕਛਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੇ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਵਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਸੁਣਾ ਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ
1: ਆਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਧਾਕੜ, ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਝਲਾਵਾੜ ਸੇ। ਆਜ ਆਪਾਂ ਇਨਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜੂਨ ਮਾਹ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀਓ ਕੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਂਗੇ। ਤੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਕੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ।
2: ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਰਾਏ ਦੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਨਕੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨਕੋ नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: तो सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आसान शब्दों में देखा जाए तो नर्सरी प्रारंभिक अवस्था होती है पौधों को लगाने की। इसमें सर बीजों के माध्यम से हम नर्सरी तैयार करते हैं और जिससे क्या है हम जो शुरुआती अवस्था में पौधों को उगाकर एक निश्चित समय पर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब दूसरे जो मुख्य खेत में स्थानांतरित कर देते
1: हैं। साहब जून का महीना में कैसी कैसी सब्जी होवे और कई कई की नर्सरी तैयार कर सके?
2: हाँ जी, तो जून का महीना देखा जाए तो सर बारिश का महीना होता है। तो सबसे पहले इसमें नर्सरी बनाने का तरीका होता है कि इसमें हम जो जमीन से उठी हुई नर्सरी बनाएं ताकि जो अत्यधिक बारिश हो या फिर अत्यधिक मात्रा में पानी बहकर आए तो क्या है पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। और सब जो बारिश के मौसम में जो सब्जियां देखी जाती है वो मुख्य रूप से हम मिर्च टमाटर बैंगन भिंडी आदि सब्जियों को हम उगा सकते हैं।
1: तो जैसे नर्सरी तैयार करेंगे बीज बोऊंगा तो इससे पहले जमीन कैसे तैयार करें कृषक साथी?
2: तो क्या है सर जब नर्सरी तीन तरीके की देखी जाती है सर। नर्सरी एक तो उठी हुई नर्सरी होती है सर जो हम मुख्य रूप से बारिश के मौसम में लगाते हैं सर, ताकि क्या है सर जो अत्यधिक मात्रा में पानी बहकर आए या फिर जो पानी भरने की समस्या हो उससे पौधों को नुकसान ना पहुंचे और पौधे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए उग पाए।
1: ठीक है सर, बेड बनाकर?
2: हाँ, जो ऊंचा उठा हुआ बेड बनाते हैं वो एक बेड बनाते सर, एक दसा हुआ बेड बनाते जो जमीन से निचली सतह पर मिट्टी को खोद के बनाया जाता है, जो सर्दी की अवस्था होती है सर उसमें क्या है पौधों को पाले से बचाया जा सके और जो ठंडी अत्यधिक ठंडी जो हवाएं चलती है उससे पौधों को मरने से रोका जा सके।
1: तो वो सर्दी में?
2: हाँ जी, वो सर्दी में उगाई जाती है। और एक समतल भूमि पर उगाई जाती है जो गर्मी के मौसम में उगा सकते हैं हम, जिससे क्या है उनको प्रॉपर रूप से हवा और पानी मिल सके और पौधों को मल्चिंग के माध्यम से धूप से भी बचाया जा सके। तो तीन तरीके की होती है और उगाने का तरीका देखा जाए सर तो सर इन दो तरीके से उगा सकते हैं हम। एक तो सर पोर्ट्रे वाली जो कोकोपीट वाली विधि होती है वो सर्वोत्तम देखा जाए तो सर्वोत्तम होती है सर। उसमें क्या होता है सर कि जो टमाटर मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियां होती है

0: होती है सर। नर्सरी एक तो उठी हुई नर्सरी होती है सर, जो हम मुख्य रूप से बारिश के मौसम में लगाते हैं सर, ताकि क्या है सर, जो अत्यधिक मात्रा में पानी बहकर आए या फिर जो पानी भरने की समस्या हो उससे पौधों को नुकसान ना पहुंचे और पौधे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, उग पाए। ठीक है सर,
1: बेड बनाकर,
0: हाँ, जो ऊंचा उठा हुआ बेड बनाते हैं, वो एक बेड बनाते सर, एक दसा हुआ बेड बनाते हैं जो जमीन से निचली सतह पर मिट्टी को खोद के बनाया जाता है, जो सर्दी की अवस्था होती है सर उसमें क्या है, पौधों को पाले से बचाया जा सके और जो ठंडी अत्यधिक ठंडी जो हवाएं चलती है उससे पौधों को मरने से रोका जा सके,
1: तो वो सर्दी में,
0: हाँ जी, वो सर्दी में उगाई जाती है। और एक समतल भूमि पर उगाई जाती है जो गर्मी के मौसम में उगा सकते हैं हम, जिससे क्या है उनको प्रॉपर रूप से हवा और पानी मिल सके और पौधों को मल्चिंग के माध्यम से धूप से भी बचाया जा सके। तो तीन तरीके की होती है। और उगाने का तरीका देखा जाए सर, तो सर इन दो तरीके से उगा सकते हैं हम। एक तो सर पोर्ट्रे वाली जो कोकोपीट वाली विधि होती है वो सर्वोत्तम, देखा जाए तो सर्वोत्तम होती है सर। उसमें क्या होता है सर कि जो टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियां होती है

0: ये दोनों तरीके होते हैं सर नर्सरी तैयार करने के मेनली।
1: जैसे नर्सरी तैयार कर बगले जमीन तैयार कर ली तो फिर कीट व्याधि को प्रकोप नहीं हो एक लेके कई करे कर सर।
0: हाँ जी सर, हम मुख्य रूप से सर मार्केट में एक कार्बेंडाजीम और ट्राइकोडर्मा नामक दवाई आती है, इससे हम जो एक नर्सरी का मुख्य रोग होता है डंपिंग ऑफ जिसे हम आद्र गलन कहते हैं सर, ये क्या करता है पौधों को पानी अत्यधिक पानी देने से उसके जो तने होते हैं ना वो सड़ने गलने लग जाते हैं, तो उस रोग को आद्र गलन बोला जाता है जिसका हम बचाव कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजीम का यूज करके। और सर कीट की बात देखी जाए तो सर ये मुख्य रूप से नर्सरी में दीमक नामक कीट लगता है जो सामान्यतः लकड़ियों में भी लगता है, तो इसे हम टर्माइट कहते हैं सर, अगर साइंस भाषा में देखा जाए तो टर्माइट कहा जाता है वो सफेद चींटी कहा जाता है, तो इसका प्रकोप भी सर ज्यादा नर्सरी में होता है।
1: अच्छा सर, बीज को चयन कैसा करें फिर कर्षण साथी?
0: सर बीज का चयन, बीज को सबसे पहले तो हम एक हाइब्रिड बीज दुकानों से लाएं और एक ही बीज को ज्यादा बार यूज ना करें क्योंकि उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है, तो हम मुख्य रूप से दुकानों से जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनकी राय लेकर बीज लाएं और उनको भूमि के अंदर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं। अगर ज्यादा गहराई पर बोते हैं तो सर वो टाइम पे नहीं निकल पाते, अंदर ही सड़कर मर जाते हैं। और जो बुआई के बाद जो बीज होते हैं ना उनको कोकोपीट या हल्की मिट्टी या फिर गोबर की जो मिश्रण होता है उसमें ढक दें, ये सबसे सर्वोत्तम तरीका होता है सर नर्सरी तैयार करने का।
1: हाँ जी सर, बीज बोवे तो कहीं बीज उपचारित भी करने चाहिए कहीं?
0: हाँ जी सर, बीज उपचारित करना चाहिए सर, पर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे बीज का आवरण कठोर हो या फिर उसमें अधिक भ्रूण का विकास हो तो इसके माध्यम से हमको शॉप पर जाकर कोई भी दुकान पर जाकर राय लेकर उचित दवाई लेकर उसका उपचार कर सकते हैं सर।
1: बिल्कुल सही बात है
0: सर, सर्वप्रथम उपचारित करना बहुत जरूरी होता है।
1: और जैसे छोटे छोटे टीको लगावा अच्छा कैसे ये टीको लगा भाई एक तरह से बीज उपचारित करबो?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ, ये टीका होता है ना सर, ये बीज उपचारित करने से सर क्या होता है कि रोग और कीट का प्रकोप कम लगता है और आसानी से अंकुरित हो सकता है और पौधे का निर्माण हो सकता है सर, इसलिए इसको उपचारित करना उपयुक्त माना जाता है।
1: हाँ जी सर, जैसे बीज पौधे अपन ने अंकुरित भी हो गयो थोड़ा बड़ो हो गयो उसके बाद सावधानी बरते कैसा सिंचाई कर रहा हूँ मैं कहीं देखे?
0: हाँ जी हाँ जी, तो सर ये एक तरीका होता है नर्सरी तैयार करने का, तो इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले तो हम भूमि का शोधन करते हैं, इसका मतलब है सर कि हम भूमि को एक बार जांच करते हैं कि वह ये कूड़ा करकट से तो नहीं भरी है या फिर उसमें कंकर पत्थर तो ना है, तो उसे एक बार सफाई करके उसको उपचारित करके उसमें क्या है सर बीजों को बोते हैं, तो उसके बाद सर क्या होता है कि हम गोबर की खाद या फिर कोई भी जो खाद होते हैं उपयुक्त खाद होते हैं उसका छिड़काव करते हैं बीज के ऊपर, और इसमें क्या है सर जो धूप से बचाने के लिए पौधों को क्या है हम कार्बनिक पदार्थों से या फिर पॉलीथीन से या फिर जो ग्रीन शेड होते हैं उनसे सर उसको ढक देते हैं ताकि जो धूप वगैरह है उससे हम बचा सकें और जो एनिमल होते हैं जो जानवर होते हैं उनसे भी हम बचा सकें, और उनको समय समय पर सर पानी का छिड़काव करते रहे ताकि उसमें उपयुक्त नमी बनी रहे, और जब सर पौधा तैयार हो जाता है तो उससे 10-15 दिन पहले उसमें पानी रोक दें ताकि सर वो क्या करता है कि वो एक कठोरता को सहन करना सीख ले ताकि वो जो उपयुक्त जो अनुपयुक्त कंडीशन में जब जो अनुकूल परिस्थितियां होगी तो उसमें क्या वो लड़ने के लिए आसानी से ग्रो करेगा और आसानी से उगेगा, और अगर पौधा उसको समय समय पर देखते रहे अगर पानी नहीं देने पर वो मुरझाने लगे या फिर सूखने लगे तो उसमें कुछ मात्रा में पानी वापिस देना स्टार्ट कर दे। और सर जो इसमें सर एक प्रीकिंग होती है, प्रीकिंग उसे कहा जाता है सर कि जो हम दो जैसे एक से अधिक क्यारी बना रहे हैं सर, तो उसमें जब एक एक बहुत अधिक मात्रा में सर प्लांट उग जाते हैं जो पौधे उग जाते हैं तो उसे क्या है हम वहां से निकाल के सावधानी से दूसरी क्यारी में भी सर लगा सकते हैं।
1: अच्छा जैसे बड़ा हो गया लगभग लायक भी हो गया तो कई सावधानी बरते हैं कशा पौधा का निकाल करके खेत में रोपित करे?
0: तो सर सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो जमीन है वो जैसे सूखी अवस्था में है या अत्यधिक सूखी हो जाए तो उसे पौधे को ना निकाले उसकी जड़ें टूटने की शंका बढ़ जाती है, उसमें हल्की मात्रा में पानी का सिंचाव करें या फिर सिंचाई कर दें तो उसे जो नमी होती है उसको थोड़ी सी सूखने के बाद जब वो आसानी से उसको सावधानी बरतकर जड़ों से निकाल दे और उनको एक या तो उपयुक्त पानी का छिड़काव अगर देरी से लगा रहे दूसरे खेत में तो उसमें पानी का छिड़काव करते रहे ताकि वो सूखे ना जड़े उसकी, और उनको किसी भी

0: कपड़े या फिर जो जो बोरी वगैरह होती है जिसको हम सामान्य भाषा में बोरी कहते हैं, तो उनसे ढक दें और उनको जो जो कम टेम्परेचर हो, कम तापमान हो, उस वहाँ उस टाइम पे जो उपयुक्त नमी वाली जो खेत की भूमि है वहां पे जाके उसको सावधानी से लगा सकते हैं।
1: और जो खरीफ में तो कहीं कहीं मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, यही
0: हाँ जी हाँ
1: अधिकतर
0: जी
1: लगाया जावे करसान सर, यही लगावे। तो
0: हाँ सर।
1: ये लगभग लगभग कितना दिन का हो जाए जब लग जाए खेत में लगा देना चाहिए?
0: सर अलग अलग सब्जी का अलग अलग टाइम होता है, लेकिन किसी को इसका इसका पता ना हो कि कितना टाइम में कौन सी सब्जी ट्रांसप्लांट मतलब जो स्थानांतरित करनी है, तो सर इसका मुख्य समय होता है 4 से 5 सप्ताह होते हैं ना सर। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से पौधा तैयार हो जाता है वो स्थानांतरित करने के लिए, तो सर 5 वीक का होने पर उसको आराम से हम स्थानांतरित कर सकते हैं फील्ड में सर। उपयुक्त समय यही होता है सर। वो जैसे सर जैसे प्याज हो गया, तो प्याज का जो हम स्थानांतरित करेंगे तो वो 6 से 8 वीक के अंदर हम वो तैयार हो जाएगा, तो उसको हम स्थानांतरित करते हैं सर। और जो सर फल वाले अगर पौधे को किसान लगाना चाहे तो वो सर 1 साल के अंदर तैयार होता है, 1 साल के अंदर उसको नर्सरी में से अपन खेत में लगा सकते हैं पोली बैग को हटाकर सर। और इसी के साथ सर फूल वाले अगर पौधे कोई लगाना चाहता है जो फूल वाली खेती करता है, तो उससे 3 महीने के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं सर।
1: यानी कि
0: हाँ जी
1: सबको समय अलग अलग रहे।
0: हाँ अलग अलग रहता है, लेकिन किसी को ज्ञात ना हो तो सब्जियों में मुख्य रूप से 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है सर।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ जी सर।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक किसान साथी सुन रहा है, कहीं के वो जवाब आपकी तरफ से, युवा विशेषकर युवा किसानों के?
0: युवा किसानों से सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल देखा जा रहा है कि सब जो रसायनों का यूज अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं सर, तो सर मेरा यही कहना है कि आप रसायनों का यूज ना करके एक जैविक खेती के ऊपर बढ़ें और जैविक खेती से पौधे तैयार करें, ताकि पौधे की गुणवत्ता भी अच्छी हो, उत्पादन भी अधिक हो, और जो मनुष्य उसको खरीद रहे हैं या फिर उत्पाद के रूप बनाकर उसका यूज कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं उनके लिए भी जानलेवा साबित ना हो वो, और वो आसानी से उसका यूज कर सके, जैविक खेती के लिए आगे बढ़े। और सर इसका मतलब जो खेती करते हैं सर जो किसान लोग, तो वो सर अगर कोई सब्जी उगा रहा है, कोई कोई जो फूलों का बगीचा फलों का बगीचा लगा रहा है, तो उस पर उपयुक्त रूप से ध्यान दे, उसको लगाने के बाद छोड़ ना दे कि वो उग जाएगा, तो उसको सर कीटों का रोगों का ध्यान रखे, और उपयुक्त किसी से राय लेकर या फिर दुकान वाले से राय लेकर, कोई शॉप वाला जो दवाइयां रसायन बेचता है उनसे राय लेकर उनका छिड़काव करें उपयुक्त समय पर, ताकि उनका उत्पादन भी अधिक हो और वह आसानी से खेती भी कर सके। हाँ
1: राजू धाकड़ जी, आपने किसान भाइयों में बहुत अच्छी जानकारी दी, एक लेके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम सर।
1: तो सत्याओं, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने राजू धाकड़ जी ने, कि जून का महीना में सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें और कहीं कहीं रोग हो सके और रोगा से कैसे बचा सके। और सत्याओं, अब बात करा एक योजना की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सच्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पान यानी कि जो PMKSY भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिन्हें 2015 में हर खेत ने पानी का लक्ष्य कहलाया शुरू की। इको उद्देश्य यही है सत्याओं की, सिंचाई सुविधा को विस्तार करबो, सूक्ष्म सिंचाई का माध्यम से जल को उपयोग हो सके, जिससे किसान की आय बढ़े। क्योंकि सत्या कम पानी में ज़्यादा फसल होगी, तो वो पानी यानी कि कम पानी होगा ज़्यादा फसल होगी, या अपने पास कम पानी है तो उनमें अपन ज़्यादा फसल उत्पादन कर सका। इके लेके ये योजना है। सूक्ष्म सिंचाई का माध्यम से जल को उपयोग हो सके, जिसके कारण जिससे किसान की आय भी बढ़े, हर खेत में पानी मिले, प्रति बूंद अधिक फसल और जल संरक्षण के ताई बढ़ावा देवो भी इको उद्देश्य है, ताकि पानी की बचत हो सके और ई का माध्यम से भूमिगत जल स्तर भी बढ़े। और अगर भूमिगत जल बढ़ेगा तो पानी की कमी नहीं आएगी सत्यों। तो योजना के तहत अपन प्रति बूंद अधिक फसल के लेके उपकरण के लेके वित्तीय सहायता देवे है इमें योजना में। तो अपन भी वित्तीय सहायता के लेके, जैसे मान लो अपन सूक्ष्म सिंचाई या ड्रिप है, फव्वारा है, ये लगा रहा है, तो अपन के ताई आवेदन करनी चाहिए और आवेदन करके योजना को फायदा लेनी चाहिए। और अनुदान राशि की बात करें तो अलग अलग श्रेणी का जो किसान है वे अलग अलग ही इनके ताई

वित्तीय सहायता मिले है, तो ई योजना को लाभ लेवा के लेके साथ आऊँ, कृषि पर्यवेक्षक या जो कृषि अधिकारी है उनसे मिल करके पूछनी चाहिए कि क्या अपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में माँ के ताई या तो ड्रिप लेनी है, फवारा लेना है या दूसरा उपकरण लेना है सिंचाई का, तो कई कई कागज की जरूरत है और कशा आवेदन कर सका। तो कृषि अधिकारी से मिले, कृषि जो कृषि पर्यवेक्षक रहे गांव में वहां से मिले और उनका बताए के अनुसार दस्तावेज कागज लेकर के आवेदन करें ताकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को फायदा मिल सके। और सत्याऊँ अच्छी एक और योजना है कृषि अवसंरचना कोष। सत्याऊँ अब बात करें अपन कि कृषि अवसंरचना कोष की कई हो, तो यो भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय वित्त पोषण योजना है। एक मुख्य उद्देश्य किसान कृषि उद्यमी या फिर एपीओ यानी कि जो किसान उत्पादक संग्रह है यहाँ के ताई फसल कटाई के बाद का प्रबंधन के लेके बुनियादी ढांचों जैसे यहाँ कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है या इनके निर्माण के लेके वित्तीय सहायता दी जावे, ऋण देवे ताकि किसान भाई बहन परेशान नहीं हो और किसान की आय बढ़ावो और कृषि की उपज की बर्बादी नहीं हो, एक मुख्य उद्देश्य है। तो किसान की आय बढ़े इसके लेके कृषि अवसंरचना कोष

अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

तो सत्यवादी अपन ने सुशीला देवी और सत्य के आवाज में लोकगीत सुनियो। और अब चलता चलता आज का मंडी भाव, तो झालरा पटन कृषि उपज मंडी में गेहूँ बकिया 2200 से 2470 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन बकी 6000 से 7026 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों बकी 6800 से 7300 रुपये प्रति क्विंटल, धनियों बकियों 9000 से 13500 रुपये प्रति क्विंटल, अड़सी बकी 8200 से 8800 रुपये प्रति क्विंटल, सही चना बकिया 4900 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल, मेथी बकी 5500 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल, और चिया सीड बकी 13000 से 18500 रुपये प्रति क्विंटल, कलौंजी बकी 10000 से 16600 रुपये प्रति क्विंटल, और मसूर बकी 6500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल। तो सत्याओं ये चा मंडी भाव। और अब समय हो रहे आपसे विदा लेबा को, तो बद्रीलाल लोधा के तैयार दो, राम राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के गाए गीत से। फिल्म है खुद गर्ज, गीत लिखा है इंदिवर और फारूक कैसर ने, संगीत राजेश रोशन का है।

0: Akashwadi at 90.
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए। देश के लिए जिए, देश पर मिटे, समर्पण का

0: Cena.
1: और आइए अब सुनते हैं फिल्म खुद्दार में अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया गीत। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत अनु मलिक का है।

कुमार सानू और अलका याग्निक से ही आइए सुनते हैं कोयला फिल्म का गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची।

भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों

0: अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती

0: सकती है एक रिपोर्ट पश्चिम एशिया के लिए यह नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए यह उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं जिससे यह खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा दसवां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार श्रद्धालुओं के

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

ये थे अताउल्लाह खां। श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस FM 103.2 MHz पर। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। इस समय रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।